0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
9: Really?

0: were trying to jump from the roof just to save their lives. So after that, we are seeing that these kind of measures that are in fact, announced by the Delhi LG. Apart from that, let me also tell you that one of the concern that was raised in this entire matter was that the fire tenders were yet again laid to the spot. So for that, a survey has been announced, which will be to identify all the bottlenecks because of which the fire tenders are not able to reach the spot at time. So certainly this only comes after the 21 lives have been lost, but there is assurances certainly that is coming from the government, because there's also a joint committee that has been formed to investigate the entire matter. And let me tell you that in Malviya Nagar itself, there are 18 properties that have been identified for surprise inspections that will be starting from today itself. Over to you.
1: Right, absolutely, Ishika. Like you rightly mentioned, investigation is underway in the incident to ascertain what exactly happened and what was the cause of the fire. Thank you so much for joining us and sharing those updates with us. Let's now take you through more breaking news coming in at this hour with devastating information coming in from Muzaffarpur. A massive fire broke out in the ICU ward of a private hospital in Muzaffarpur. Casualties feared. Now, the fire department arrived at the scene upon receiving information and is conducting rescue operations. While the death toll in the case, we've been told, has risen to about 3 in Muzaffarpur, this, remember, is an incident stemming in from Bihar. Those are the visuals right there on your screens at the moment. News of another devastating fire that has shocked the nation. A massive fire broke out in the ICU ward of a private hospital in Muzaffarpur of Bihar. Casualties have been feared in this matter as well. We've been told that the death toll has risen to about 3. So 3 people have died in this incident. The fire department has arrived at the scene. They've received the information and are now conducting rescue operations. Let's also listen into the reactions coming in.
2: 3:55 में हम लोग सूचना मिला कि बुरा प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है. सूचना पाते हुए मेरा फायर फाइटर के प्रथम समझा, द्वितीय समझा, तृतीय लगातार हम लोग 7 से 8 गाड़ी लेकर हम लोग घटनास्थल पहुंचे. यहां पहुंचने पर देखा गया कि 5वां तालाब आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है. तो तुरंत हम लोग आग बुझाना शुरू किया और जितने पहले प्राथमिकता था, हम लोग जितने इसमें व्यक्ति हैं भर्ती हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए. उसमें हम लोग रेस्क्यू किया गया. रेस्क्यू के माध्यम से करीब 15 से 20 व्यक्तियों का हम लोग बाहर निकाल लिए, जिसमें 2 व्यक्ति स्पॉट डेथ हो गए हैं और सभी व्यक्तियों के अगल बगल के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है.
3: यहाँ कितने लोगों की मौत हुई है?
2: यहाँ 2 लोगों की मौत हुई.
4: और आईसीयू में कुल कितने लोग थे जिसका घटना हुआ?
2: 15 से 20 व्यक्ति थे.
4: क्या हुआ
5: है? दूध और जो हमारे चचा हुए मेरे, और वही आग लग गया सर.
4: पिताजी की मौत हो गई.
3: कैसे मालूम हुआ आपको आग
5: लगी? जी वही आग लगा सुबह, मतलब गए सब एक ही स्टाफ यहाँ से भाग चुका
4: था. यहाँ भर्ती कराए हुए थे?
5: जी जी.
6: यहाँ आईसीयू में आग लग गया है. अब आग किस कारण लगा है? अब मैनेजमेंट के गलती के कारण हमेशा उसको आईसीयू में जो होता है एसी चलता है, एसी को हमेशा मैनेज करना होता है. हीट ज्यादा है. अब क्या कारण है कि कैसे आग लगा पता नहीं.
7: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में आज अहले सुबह निजी अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग लग गई है. बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय 20 से 25 लोग आईसीयू में भर्ती थे, जिसको अब निकाला जा रहा है. और बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया. मामले की सूचना जैसे ही अग्निशमन विभाग की टीम को लगी, कई गाड़ियां अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. लेकिन इस बीच बड़ी दर्दनाक हादसा जो है मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के इसी प्रसाद हॉस्पिटल से सामने आ रहा है. आपको बता दें कि ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में यह अस्पताल जो है प्रसाद अस्पताल वह स्थित है और इसके 5वें फ्लोर पर आईसीयू है.
8: जैसा आप जान रहे हैं आग पे तो काबू पा लिया गया है और आग शॉर्ट सर्किट के कारण प्रथम दृष्टया जो मॉनिटर रहता है आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें गड़बड़ी के कारण जो है ये पूरी घटना हुई है और काफी धुआं फैल गया था. 3 डेथ्स अभी तक कंफर्म हुई है. आईसीयू में 13 मरीज थे, संभवतः सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, तो उनको अगल बगल के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है और सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं पूरी टीम के साथ. अन्य मरीज भी जो इमरजेंसी में या जिसकी माइनर सर्जरी हुई है, जो लोग भर्ती हैं, वो सब लोगों को हम लोगों ने चेक करवा लिया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं. हम लोग लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन में है कि अन्य जो मरीज़ भर्ती हैं, अगर वो दूसरे जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको शिफ्ट करा रहे हैं.
1: But my colleague Raman Roy joins us in Patna. Raman, a devastating piece of information coming in from Bihar. But after Delhi, we're hearing of another fire.

0: when the party named Shobhandeep Chattopadhyay, a senior leader of the Trinamool Congress, as leader of opposition in the West Bengal Legislative Assembly after the election results. And that letter, of course, was sent by Abhishek Banerjee. Now, what these leaders are saying, or what these MLAs are saying, is that, look, we have followed procedure and elected our leader and the leader of opposition. And what they're saying is Mamata Banerjee remains the leader of the party. Now, in a sense, that's different from other defections that we've taken place where,
1: right.
0: Let's, for example, take Maharashtra's example, where Eknath Shinde claimed he was the Shiv Sena. Here, these legislators are saying they are the Trinamool Congress. They are with, Mamata Banerjee, but they have elected their own leader of opposition. So technically, it's a slightly different situation. But in terms of the optics, in terms of the larger political impact, it seems to be the same. The Trinamool is crumbling. The Trinamool, of course, is splintering from within. And many are now skeptical over whether a repeat of this will also take place in the Lok Sabha.
1: As always, Saurabh, thank you so much for breaking down the latest details for us. Expelled TMC MLAs Rituprata Banerjee and Shondipan Sahal have submitted that letter claiming support of 60 MLAs while reaffirming Mamata Banerjee as the party's leader. And the speaker has recognised rebel leader Rituprata Banerjee as the leader of opposition. Many say a full-blown revolt is now shaking Mamata Banerjee's Trinamool Congress, raising the question whether a larger realignment is currently underway for her party. 58 MLAs have claimed to be the real Trinamool after Speaker approved Rituprata Banerjee, the man leading the rebellion, as the new leader of opposition. But Mamata Banerjee's troubles, many say, don't end there. An all-out implosion could be next, with AJUP chief Humayun Kabir claiming Kela has just begun. He claims that as many as 20 MPs are planning to dump Mamata Banerjee. And amid this deepening crisis for Mamata Banerjee, her close aide Firhad Hakim has resigned as the mayor of Kolkata. The party says he did so after seeking Mamata Banerjee's nod. So as Team Mamata fights for the real Trinamool tag, the opposition is calling this a repeat of the Shinde model.
2: Want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the speaker has accepted that.
3: Trinamool Congress, aajke bajare hasher kotuk hoye dariyeche, je Trinamool ekta brihottomo rajnoitik dol, je dol porishodiyo riti niti jane na, কিভাবে তাদের দল নেতা অর্থাৎ পরিষদ দল নেতা করতে হয় সেখানে ব্যর্থ হয়েছে
4: মমতা ব্যানার্জি আসলে তৃণমূল হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জি জিসনে তৃণমূল কংগ্রেস কো জন্ম দিয়া তৃণমূল কংগ্রেস কা মা জো হ্যায় ওহি আসলে তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়
5: মেরা পাস খবর হ্যায় 41 20 এমপি वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी
6: ममता बनर्जी जिस खेल में बार बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और किए भी थे वो एक ही खेला खेले जा रहे हैं एक ही भी खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में ये एक नाथ शिंदे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं
7: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं कि उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर ये दिखाना ये उनकी हॉबी है
8: शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे सत्ता भोगे सब लोगों ने परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ
1: सौरभ कंटिन्यूज टू बी विद अस सौरभ एज यू वर हाइलाइटिंग व्हाइल रेबल एमएलएज इंसिस्ट दे स्टिल सपोर्ट ममता बनर्जी देयर एंगर इज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन अभिषेक बनर्जी and his growing influence with

0: in a bid to escape the flames. Local residents rushed to help, laying mattresses on the road below and assisting survivors as they landed. The visuals have become a stark reminder of the panic and chaos that unfolded within minutes.
1: The fire official on record has stated that why the fire got so massive, because there was no window to escape for the people staying in this building and only one entry and exit.
2: Right, absolutely, H3. But the million-dollar question is that there's perhaps only one entry and exit point here. We have the forensic team here. We have the police officials here, the NDRF here, trying to ascertain as to what led to that fire. But eyewitnesses here talking to us and telling us that at least 50 to 100 people were staying inside this hotel.
0: For families of the victims, the questions are painful and unavoidable. How was a facility licensed for 6 rooms allegedly operating 25? Were safety norms being enforced? And could lives have been saved had regulations been followed? As police prepares to act and multiple investigations gather pace, the focus is now firmly on accountability. Bureau Report, NDTV.
3: All right, we have breaking updates coming in on NDTV this morning. The investigation into Delhi's devastating hotel fire is now widening beyond the owner. Delhi police is searching for the hotel manager, Jay Mishra, after the owner, Lavkesh Bajaj, allegedly told investigators that he had handed over the entire management of the property to him. As per investigators, all hotel licenses were reportedly issued in Jay Mishra's name. So you see, the probe is now moving from the question of ownership to the question of operational responsibility. Ishika is tracking the latest for us. She joins us live at the moment. Ishika, so police have already found that the establishment allegedly lacked a fire NOC. It was operating far beyond its permitted capacity, as we just discussed. Tell us now, how central is Jay Mishra to this investigation now? And do police believe he was effectively running the hotel operations?
4: As you rightly mentioned, Parmeshwar, in fact, the investigation continues now. We've already seen how the Delhi police had, in fact, arrested the hotel owner late last evening. And now, in fact, the search is for the hotel manager. And his name, what we are being told by the sources, is Jay Mishra. So certainly, the police is trying to hunt the manager down, because apparently he was present at the time when the fire tragedy happened here. So in fact, you know, the owner has also revealed it to the police that it was Jay Mishra who was overseeing all the operations here at the BNB. So how was it going, ahead? How was Jay Mishra, under which the owner also goes on to say that the license was also issued. The license for the permit of only 6 rooms was in fact issued under the name of Jay Mishra. That is what the hotel owner has revealed to the Delhi police, after which it is, investigated by the police as to how Jay Mishra in fact expanded those 6 rooms into those 24 rooms. So that is why, you know, the Delhi police is now trying to arrest the hotel manager, and also how did he fled from the spot when this entire incident happened, and how was he in fact did not even have the fire NOC, and yet he was running this entire business. So it is the big investigation that is being currently done by the Delhi police. Apart from that, let me tell you that the orders have been given by the Delhi LG that a joint inspection team will be here in Malviya Nagar, and in fact will be auditing all such commercial establishment. And in fact, we'll try to show you the visuals also. My camera person Sachin is trying to show you the visuals that the lane which is right next to the hotel, the revenue officials have come there, the joint inspection team have also come here for auditing all such commercial properties. We are showing you the visuals currently, and after this the audit report will be submitted, and on the basis of that the sealing will be done. Right. Over to you,
3: Ishika. As always, thank you so much for joining us with the latest revelations. So if licenses were issued in the manager's name, as per the claim coming in from the owner to investigators, and the owner claims management was actually delegated, the big question now is, who signed off on the decisions that allegedly allowed the hotel to function in violation of multiple norms. On that note, you must also note, less than 24 hours after the Delhi hotel fire claimed 21 lives and raised difficult questions about safety compliance, another devastating fire has now been reported, but this time from a hospital in Bihar. At least 4 people have lost their lives after a devastating fire broke out in the ICU of Prasad Hospital in Bihar's Muzaffarpur district earlier this morning. Firefighters were told rushed to the hospital and worked for hours to bring the blaze under control. This as staff and rescuers scrambled to move patients to safety. Officials said 15 patients were admitted at the time and records of 13 have been accounted for so far. So several critically ill patients from the ICU, they were shifted to nearby hospitals for continued treatment. But outside the hospital, grieving family members have gathered and heavy police deployment was made to maintain law and order.
5: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित हम उसी निजी नर्सिंग होम के आईसीयू की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी पर दिखा रहा है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो आईसीयू है जहां आज अहले सुबह भीषण आग लगी है और तमाम उपकरण जो है वह जलकर राख हो गए हैं। तस्वीर बयां कर रही है कि यह आगजनी कितनी भयंकर हुई होगी। इसी बेड पर मरीज सोते हैं, मरीज का इलाज किया जाता है और इस बेड की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको एनडीटीवी पर सबसे पहले दिखा रहे हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रसाद नर्सिंग होम के 5वें फ्लोर पर यह आईसीयू स्थित है जिसमें तकरीबन 20 से 25 मरीज का इलाज चल रहा था और उसी समय यह घटना हुई है। घटना इतनी भयानक हुई है कि पूरे जांच के लिए इस आईसीयू को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है वह तस्वीर एनडीटीवी पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। तो अग्निकांड के बाद मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में स्थित निजी अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस पूरे घटना के बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जो भी मरीज के परिजन है वो अपने मरीज की सुध लेने को लेकर लगातार व्यस्त है, लोग अपने परिजन को ढूंढ रहे हैं। हालांकि जब घटना हुई थी तो सभी मरीज को यहाँ से निकालकर अलग अलग अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लोगों को इस बात का भय सता रहा है कि किनके परिजन है और किसके परिजन इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ,
6: लाश उसमें था, लाश गायब हो गया।
7: आपके यहाँ पर मरीज आए हुए थे क्या?
6: लाश कर रहे थे,
8: लाश के दौरे हम थे।
7: अच्छा, तो सुबह सुबह आग लगी है?
8: हाँ, सुबह सुबह एकदम।
7: उसके बाद आपके परिजन कहाँ है?
6: ना पता है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल
7: रहा
8: है। अस्पताल वाले क्या बोल रहे हैं? बोला रखा हुआ है, 3 बजे से खोजते हैं लाश, 3 बजे से अकेला मारे दौड़ रहा है, लाश गिर रहा है,
7: नहीं मिला है,
8: नहीं मिला। सब हमको भी झड़के लगा।
9: जैसा आप जान रहे हैं, आग पे तो काबू पा लिया गया है और आग शॉर्ट सर्किट के कारण प्रथम दृष्टया जो मॉनिटर रहता है आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें गड़बड़ी के कारण जो है ये पूरी घटना हुई है और काफी धुआं फैल गया था। 3 डेथ अभी तक कंफर्म हुई है। आईसीयू में 13 मरीज थे, संभवतः सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, तो उनको अगल बगल के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है और सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं पूरी टीम के साथ। अन्य मरीज भी जो इमरजेंसी में या जिसकी माइनर सर्जरी हुई है, जो लोग भर्ती हैं, वो सब लोगों को हम लोगों ने चेक करवा लिया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हम लोग लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन में है कि अन्य जो मरीज भर्ती हैं अगर वो दूसरे जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको शिफ्ट करा रहे हैं।
7: अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हुई
10: है, क्या लगता है और क्या आंकड़ा और बढ़ेगा?
7: ये अभी कहना उचित नहीं होगा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके। तो अभी तक हम तो है कि प्रयास चल रहा है। यहाँ पर चूंकि काफी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से मंगाया गया है। अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्ण का सामान ना हो जाए यहाँ पर फोर्स रहेगा।
11: यहाँ आईसीयू में आग लग गया है, अब आग किस कारण लगा है, अब मैनेजमेंट के गलती के कारण हमेशा उसको आईसीयू में जो होता है एसी चलता है, एसी को हमेशा मैनेज करना होता है, हीट ज्यादा है, अब क्या कारण है कि कैसे आग लगा पता नहीं।
7: क्या हुआ है
8: उदयपुर जो हमारे चाचा हुए मेरे, और वही आग लग गया सर।
7: पिताजी की मौत हो गई, कैसे मालूम हुआ आपको आग लगी?
8: जी वही आग लगा सुबह, मतलब गए सब एक ही स्टाफ यहाँ से भाग चुका था,
7: यहाँ भर्ती कराए हुए थे ना।
8: जी जी,
12: टीम पहुंच चुकी है, अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है, सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है। कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हुई।
13: नहीं तो अब सरकार को इसमें एक्टिव होकर काम करना चाहिए। अब कहीं आग लग रहा है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है, इस पर तो सरकार को ही ध्यान देना चाहिए।
14: सर स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं सर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री
13: कहाँ बोलने वाले हैं।

एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ।

0: बच्चे थे उनके, उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। तो ये बताया जा रहा है भाई वहाँ ये वैसे ऐसे हादसा हो गया।
1: Switching tracks now to a full-blown revolt that is taking place, that's literally shaking Mamata Banerjee's party. 58 MLAs have claimed to be the real Trinamool after Speaker approved. This is Rita Brata Banerjee, the man leading the rebellion as the new leader of opposition. But Mamata's troubles don't end there, with an all-out implosion that could be next. With, of course, we have Humayun Kabir claiming Kela has just begun. He claims that as many as 20 MPs are planning to dump Mamata Banerjee amid the deepening crisis. Mamata's close aide Firhad Hakim has resigned as Kolkata mayor, and the party says he did so after seeking Mamata Banerjee's nod. As a team, Mamata Banerjee is now fighting for the real Trinamool tag. The opposition is calling this a repeat of the Shinde model.
2: We want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the speaker has accepted that.
3: Trinamool Congress aajke bajare hasher kotuk hoye dariyeche je Trinamool ekta brihottomo rajnoiti dol je dol porishodiyo riti niti jane na কিভাবে তাদের দল নেতা অর্থাৎ পরিষদ দল নেতা করতে হয় সেখানে ব্যর্থ হয়েছে।
4: মমতা ব্যানার্জি আসলে তৃণমূল হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি জিসনে তৃণমূল কংগ্রেস কো জন্ম দিয়া, তৃণমূল কংগ্রেস কা মা জো হ্যায় ওহি আসলে তৃণমূল কংগ্রেস হ্যায়।
5: মেরা পাস খবর হ্যায় 41 সে 20 MP वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके, वो जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा, उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेगी।
6: ममता बनर्जी जिस खेल में बार बार कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और किए भी थे, वो एक ही खेला खेले जा रहे हैं, एक ही भी खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी, आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में। ये एक ना सिंधे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं।
7: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना, और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना ये उनकी हॉबी है।
8: शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी, हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ।
9: ये तृणमूल नाम का ही डिमोलाइज होना चाहिए, इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये नाम ही बंगाल को बहुत बर्बाद किया 15 साल तक, लोग उसको सुनना देखना नहीं चाहते, फिर टीएमसी में अच्छा बुरा ही क्या है।
1: Right, of course, to know more on this, we have my colleague Saurabh Gupta joining us to get us details. But before that, let's just get you details. And this is after elections that the is really losing the party legislative, and it's leading to this collapse with 58 MLAs taking claim to being the real Trinamool Congress. 58 TMC MLAs have nominated Rita Brata as the leader of opposition, and the institutional collapse that one is seeing after that huge loss that the TMC has suffered in the election. Now, the TMC, as far as all state committees are concerned, with the TMC's frontal organizations that have been dissolved, and the organizational collapse with the TMC MLAs attending that review meeting with the chief minister. The TMC MLAs are in communication with Team Mamata, and this is the legal collapse that we are seeing with the demands of Abhishek Banerjee. You know, that is the demand that's being made as far as Abhishek Banerjee is concerned, demanding the recognition of others instead, and moving the High Court against that CID notice. So that is what we

0: खबर है 41 से 20 एमपी वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के अभिषेक को चैलेंज करके और जो लोकसभा को चुनाव है नेता चुनाव के रखा उनको खिलाफ भी लोकसभा में जाके स्पीकर को दबाव डालेंगी।
1: वांट ममता बनर्जी टू बी आवर चीफ एडवाइजर टू गिव अस एडवाइजेस दैट विल हेल्प अस in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that.
2: Trinamool Congress, aajke bajare hasher kotuk hoye dariyeche, je Trinamool ekta brihottomo rajnoiti dol, je dol porishodiyo riti niti jane na, kibhabe tader dolo neta, othot porishod dol neta korte hoy, সেখানে ব্যর্থ হয়েছে।
3: মমতা ব্যানার্জি আসলি তৃণমূল হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি জিসনে তৃণমূল কংগ্রেস কো জন্ম দিয়া, তৃণমূল কংগ্রেস কা মা জো হ্যায় ওহি আসলি তৃণমূল কংগ্রেস।
4: মমতা ব্যানার্জি জিস খেল মে বার বার কংগ্রেস পার্টি কো তোড়নে কি কোশিশ কর রহি থি অর কিয়ে ভি থে, ও এক হি খেলা খেলে যা রহে হ্যায়, एक ही भी खेल जो खेलने में ममता बनर्जी माहिर थी, आज वो खुद देख रहे हैं कि बीजेपी वो खेल खेलने में उससे ज्यादा माहिर बनते उभर रहे हैं बंगाल में। ये एक ना सिंधे मॉडल बंगाल में अपनाए जा रहे हैं।
5: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना। और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना ये उनकी हॉबी है।
6: शिवसेना जैसा इतना पुराना पार्टी, हमारे पार्टनर भी रहे और उनका विचारधारा एक लड़ाई सब था, वो भी टूट गई सत्ता के खेल में परिवार से निकलने के लिए। और ये तो अभी कुछ ही साल आए थे, सत्ता भोगे सब लोगों ने, परिवार से बाहर जाना चाहता है समाज, इसलिए मुझे लगता है ये लड़ाई है परिवारवाद के खिलाफ।
7: Well, the opposition claims that Maharashtra model is now being repeated in West Bengal, but the comparison is not entirely correct. You know, NDTV's managing editor Padmaja Joshi also explains the reason why the comparison is incorrect. Take a look at a chunk.
8: With the events unfolding in West Bengal, many people are talking about it as the Maharashtra model, but that is not entirely correct, and let's tell you why. Let's take you back to what happened in Maharashtra. The Shiv Sena at that time had 56 MLAs, 40 of them rebel. As far as Ajit Pawar's party is concerned, the NCP had 53, 41 broke away, which is more than 70% each in both parties. Now compare this to what is happening in West Bengal. The Trinamool Congress has 80 MLAs, and of those, 60 have rebelled so far, 58 in person, and they claim they have two more with them. So 73% have rebelled there. But here is where the difference comes in. In Maharashtra, the BJP that time had only 106 MLAs, which means they were short of the majority. The majority mark is at 145. The BJP had only 106, which means they needed these rebels from either the Shiv Sena or from NCP. On the other hand, in West Bengal, the BJP now already has a clear majority. The majority mark is 148, and they have about 50 extra. In fact, 60 extra. Now after Falta, the BJP in West Bengal has 208 MLAs. So to compare the two would be to compare apples and oranges.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
8: The news.
9: Ayush, since when do we do scripts?
8: Fair point.
9: Picture this. The biggest stage. Floodlights.
8: Wow.
9: 4K. The works.
8: Where's the hook?
9: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
8: Where's the hook?
9: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
8: Bro, where's the hook?
9: Cross-platform, digital first, virality.
8: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You've got to be real in a world of reels. You've got to be original in a world where everything seems generated.
9: That's it. That's what we're looking for.
8: The best campaigns.
9: The hottest trends.
8: The smartest brand moves on our new show.
9: But wait, what do we call it?

0: fire. This is a very difficult moment for them. We, of course, will be respecting their privacy at this point. This is extremely devastating for the family. Thank you, Reeth, for joining us live from Gurugram. Moving on to another tragedy that is unfolding in the state of Bihar, a tragic fire at the Prasad Hospital in Bihar's Muzaffarpur has claimed at least 5 lives. The blaze reportedly broke out in the hospital's ICU on the 5th floor this morning, triggering panic among patients and staff. Firefighters rushed to the spot and battled the flames for hours while rescue teams worked to evacuate 20 people who were critically injured. Meanwhile, forensic experts reached the hospital and collected evidence to determine the cause of the fire. Grieving family members gathered outside the facility as police maintained security in the area. And you also have Bihar's Chief Minister Samrat Chaudhary announcing an ex gratia compensation of 4 lakh rupees for the families of those who have lost their lives in that fire. Health Minister of the state, Nishant Kumar, faced questions from the reporters over the tragedy, but he chose to duck those questions and remain mum on this unfolding tragedy.
1: जैसा आप जान रहे हैं, आग पे तो काबू पा लिया गया है और आग शॉर्ट सर्किट के कारण प्रथम दृष्टया जो मॉनिटर रहता है आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें गड़बड़ी के कारण जो है ये पूरी घटना हुई है और काफी धुआं फैल गया था। 3 डेथ अभी तक कंफर्म हुई है। आईसीयू में 13 मरीज थे, संभवतः सीसीयू में भी कुछ मरीज थे, तो उनको अगल बगल के अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है और सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं पूरी टीम के साथ। अन्य मरीज भी जो इमरजेंसी में है, जिसकी माइनर सर्जरी हुई है, जो लोग भर्ती हैं, वो सब लोगों को हम लोगों ने चेक करवा लिया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे कोऑर्डिनेशन में है कि अन्य जो मरीज भर्ती हैं, अगर वो दूसरे जगह पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनको शिफ्ट करा रहे हैं।
2: क्या हुआ है
3: भैया? जो हमारे चाचा हुए मेरे, और वही आग लग गया है सर।
2: पिताजी की मौत हो गई, कैसे मालूम हुआ आपको आग लगी?
3: जी वही आग लगा सुबह, मतलब गए सब एक एक स्टाफ यहाँ से भाग चुका था,
2: यहाँ भर्ती कराए हुए थे।
3: जी जी
4: यहाँ आईसीयू में आग लग गया है। अब आग किस कारण लगा है, अब मैनेजमेंट के गलती के कारण हमेशा उसको आईसीयू में जो होता है एसी चलता है, एसी को हमेशा मैनेज करना होता है, हीट ज्यादा है। अब क्या कारण है कि कैसे आग लगा पता नहीं।
5: आग लग गई है तो उसके कारणों की जांच होगी और निदान की व्यवस्था सरकार करवाएगी।
2: सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हो पाई है?
6: अभी तक 4 लोग की मृत्यु हुई
2: है।
6: ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सभी अस्पतालों के संपर्क में कि सभी की जान बचाई जा सके, तो अभी तक हम तो है कि प्रयास चल रहा है। यहाँ पर चूंकि काफी संख्या में लोग आए हैं तो फोर्स यहाँ पर तैनात है और अतिरिक्त बल भी पुलिस लाइन से मंगाया गया है। तो अभी तक सामान्य स्थिति है, लेकिन जब तक और पूर्ण का सामान ना हो जाए यहाँ पर फोर्स लगेगा।
7: टीम पहुंच चुकी है, अग्निशामक दल भी अलग से पहुंचा है, सभी पहलुओं पर जांच भी हो रही है कि क्या कारण था, आग लगने के क्या कारण थे, वहाँ सुरक्षा मानक कितना क्या था, सभी पहलुओं पर जांच हो रही
8: है। नहीं तो अब सरकार को इसमें एक्टिव होकर काम करना चाहिए। अब कहीं आग लग रहा है, कहीं चोरी डकैती हो रहा है, इस पर तो सरकार को ही ध्यान देना चाहिए।
9: सर स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बिहार के
8: स्वास्थ्य मंत्री कहाँ बोलने वाले हैं?
10: Even before we could actually deep dive into the tragic Delhi hotel fire incident, another incident shocked everyone, and this came from Muzaffarpur in Bihar, this particular hospital here which was gutted in fire today morning due to short circuit, as being told by the local officials here. The ICU went into fire and 5 patients who were there, who were under treatment over there, they have died because of suffocation in the fire which broke into the ICU, and several others who are critically injured, who are critically injured in the hospitals. Now talking about these kind of premises, these are private hospitals, not only the hospitals, even the hotels. If you see the fire compliance out, the fire compliances system is already in the place, but in the majority of these cases actually don't work actually when the fire really and actually on the ground.
0: Rahul Gandhi has sparked a fresh political storm with a series of explosive remarks warning that India could be headed toward an economic tsunami. Addressing a gathering, Rahul Gandhi claimed that the country is witnessing signs of an internal

0: rebellion and alleged that the ongoing economic situation could trigger widespread turmoil. He also said that Prime Minister Narendra Modi may not remain in office for another year, while also expressing fears that the BJP could impose a state of emergency in the future. The remarks have triggered sharp political backlash, with the BJP accusing Rahul Gandhi of spreading fear and misinformation. The BJP has called Gandhi the leader of propaganda and alleged that it is the Congress, not the country, that is facing an internal revolt.
1: ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है. सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है. अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे.
2: राहुल गांधी के तो परिवार में इमरजेंसी का इतिहास है, इसीलिए उनको लगता है इमरजेंसी हर कोई लगाने वाला है. संविधान को कुचलने का काम केवल एक बार हुआ और वो इंदिरा गांधी ने किया, जिस प्रकार से उन्होंने हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया. और इसीलिए राहुल गांधी जी जो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, उनको आज भी हर जगह इमरजेंसी नजर आती है. इमरजेंसी तो है पर कांग्रेस पार्टी में, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और रिवोल्ट तो है, सिस्टम कोलैप्स तो है, वो है कांग्रेस पार्टी में. क्योंकि 99 इलेक्शंस हारने के बाद अब कांग्रेस का इंस्टीट्यूशन परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए आज आगे आ रहा है, और इसीलिए एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं.
0: Sipping a short break, once we come back, we'll tell you what the US President Donald Trump had to say about his heated conversation with Israel's Prime Minister Netanyahu.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा प्योर मसाला।
4: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
5: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
6: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
4: हाउ विल यू सेलिब्रेट?
5: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
7: यू नो, यू रिमेम्बर, यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कम टू कबिनी एंड डू एन इंटरव्यू विद मी। यू लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट?
8: दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ आवर स्टेट दैट टू द एंटायर कंट्री दैट आवर केरला इज सेक्युलर।
9: ये विषय बंगाल की जनता के, विशेष करके मातृशक्ति के।
4: वन क्लिप दैट वेंट मोस्ट वायरल was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
10: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
11: I think that was not the only incident.
12: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

0: Bengal. Moving on now, Congress MP Rahul Gandhi has sparked a fresh political storm with a series of explosive remarks warning that India could be headed toward an economic tsunami. Addressing a gathering, Gandhi claimed that the country is witnessing signs of an internal rebellion and alleged that the ongoing economic situation could trigger widespread turmoil. He also said that Prime Minister Narendra Modi may not remain in office for another year, while also expressing fears that the BJP could impose a state of emergency in the future. The remarks have, of course, triggered sharp political backlash and reactions, with the BJP accusing Rahul Gandhi of spreading fear and misinformation. BJP called Rahul Gandhi the leader of propaganda and alleged that it is the Congress, not the country, that is facing an internal revolt.
1: ऐसी economic crisis आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने life में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है. इसको आप कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है. सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है. अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं. पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. मेरा असेसमेंट है एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे.
2: राहुल गांधी स्टेटमेंट दैट मोदी इज लाइकली टू इम्पोज वेरी फर्म स्टेप्स लाइक दैट ऑफ इमरजेंसी is a big joke by Rahul Gandhi. It is the Congress party which has got the emergency mentality. It is their party which imposed emergency. And it is BJP, then Jan Sangh, which fought against the emergency.
3: Rahul Gandhi ke to parivar mein emergency ka itihas hai. Isiliye unko lagta hai emergency har koi lagane wala hai. Samvidhan ko kuchalne ka kaam keval ek baar hua aur wo Indira Gandhi ne kiya. Jis prakar se unhone har samvidhanik sanstha ko कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया. और इसीलिए राहुल गांधी जी जो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, उनको आज भी हर जगह इमरजेंसी नजर आती है. इमरजेंसी तो है, पर कांग्रेस पार्टी में इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स और रिवोल्ट तो है, सिस्टम कोलैप्स तो है, वो है कांग्रेस पार्टी में. क्योंकि 99 इलेक्शंस हारने के बाद अब कांग्रेस का इंस्टीट्यूशन परिवारवाद के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए आज आगे आ रहा है. और इसीलिए एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी लोग छोड़कर जा रहे हैं.
4: द इकोनॉमिक क्राइसिस इज रियल. दे हैव सोल्ड $12 billion टू सेव द रूपी. दे आर सेलिंग द गोल्ड ऑफ द कंट्री. इट इज क्वाइट नाइस वेल बिफोर द पीपल रियलाइज दिस एंड दे विल कम आउट टू द स्ट्रीट्स.
0: Slip into a short break. When we return, we talk about Surya Kumar Yadav. Is he about to lose his T20 captaincy and a place in the T20 side? More on that in moments from now. Stay tuned.

0: पार्टी भेजेगा लेटर, स्पीकर उसको स्वीकृति दे देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर इधर में स्पीकर क्यों मांगा इसके बारे में हमारा कुछ अपना मेरा पर्सनल कुछ बोलना है कि जब सिग्नेचर होता था मैंने पहले मैंने शुरू किया, उसके बाद बमबल्ला शुरू किया, उसका बाद यंग लड़का बोला दादा आप लोग ज़्यादा उम्र की है थोड़ा बैठ जाइए हम कर देता है।
1: अच्छा।
0: उसी टाइम में हम कॉन्फिडेंट नाम कोई एक आदमी को सही लगा दिया कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं, जो उस दिन 6 तारीख नहीं आया था, 6 तारीख नहीं आया था।
1: ऋतुप्रत बंदोपाध्याय कौन से बुजुर्ग नेता है, वो यंग लीडर है, वो भी अपना खुद सिग्नेचर वो खुद कर पाते थे, कारण क्या हुआ कि इतने सारे?
0: उसका सिग्नेचर है हमारा, हमारा पेपर में उसका सिग्नेचर है, आई कैन शो यू, आई गॉट दैट रेजोल्यूशन बुक आई गॉट विथ मी, हम देखा सकता है आपको उसके उधर में ऋतुप्रत के भी है और जो संदीप उसको भी है, दोनों ही सही किया। तो उस दिन क्यों नहीं बोला ये गलत होता रहा हो रहा है, पार्टी का अंदर में कुछ गलत हुआ तो पहले तो पार्टी को बोलना चाहिए था, पार्टी का प्रेसिडेंट को लेटर दे सकता था, पार्टी का प्रेसिडेंट के घर में जाके

0: कोई पार्टी को पास ना नहीं जाके वो चला गया स्पीकर को पास, ये पहले तो गलत काम हो गया, गलत काम हो गया। तो उसका बाद ये हमको समझ में आया जो कोई
1: पार्टी के एफिलिएशन उनके पास है नहीं,
0: अभी नहीं है। साथ के साथ उसका हम लोग देखिए, हम पहले एक बात बोला आपको, मैं 10 साल मंत्री थे, आज कुछ नहीं है, लेकिन हमको ये आर्ज नहीं है। मैं कभी ममता से कुछ नहीं बोला जो हमको ये पोस्ट चाहिए, कभी भी नहीं। इतना दिन तो उसका साथ है, 80 साल से पहले उसका साथ है, कभी मैंने नहीं बोला। लेकिन उसका जो कैरेक्टर है वो कुछ पावर के बाहर रहने नहीं सकते थे, उसको कुछ पावर चाहिए,
1: जो 60 बागी विधायक
0: बात नहीं, बहुत चाहिए पॉलिटिकल एक्ट बहुत चाहिए। तो स्थिति बनाया ये सब, लेकिन हमको आई एम कॉन्फिडेंट इनफ जे वो भी टूट जाएगा, वो टीम नहीं रहेगा।
2: 90 TV's managing editor Padmaja Joshi spoke exclusively to a former Trinamool Congress leader and chief of the Aam Janata Unnayan Party, Humayun Kabir, on what's taking place in the TMC. Listen in. आपने काफी सनसनी फैला दी है, आपने कहा है कि 20 सांसद जो हैं धन्यवाद 20 सांसद आपने कहा है तृणमूल के टूटने वाले हैं, कौन है ये 20 सांसद?
3: मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा को पास पता है जो 58 MLA जो TMC ममता बनर्जी को नेतृत्व तो छोड़ के अभिषेक बनर्जी को खिलाफ आवाज़ उठाए, मुद्दा उठा के वो जो असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर को पास जाके जो 58 विधायक जो दबाव किया, वो उनके मुताबिक वो ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको LOP में चेयर दे दिया, वो अपोजिशन में बैठा दिया कल। तो मेरा ख्याल से जो लोग ये सब मुद्दा उठा रहे, जो बात कर रहे, तो वो अगले दिन लोकसभा में भी जो 29 MP है, 29 TMC का जो MP है, उनको जो नेता चुना गया अभिषेक बनर्जी को, उनको खिलाफ भी ये मुद्दा उठाएगी। मेरा आज जो पता है, खबर है, जो 20 MP में उनको खिलाफ, उनको नेता से, लोकसभा से नेता, TMC पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेता से हटाने के लिए एक कदम उठाएगी।
2: यानी कि आप कह रहे हैं कि 20 जो सांसद हैं वो सिर्फ लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं और अलग हो जाएंगे, 29 में से 20 अलग हो जाएंगे लोकसभा में?
3: जी हाँ।
2: क्या इसको लेकर के कोई मीटिंग भी हुई है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ सांसद जो है दिल्ली आए थे कुछ मीटिंग करने के लिए, आपने कुछ ऐसा सुना है कि TMC के सांसद दिल्ली में कोई मीटिंग किए हैं?
3: हाँ, वो सारे चल रहा है, ये चर्चा चल रहा है। वो जो बरासात का जो MP है काकुली घोषदार, उनको लेके सारे कोई MP है जो चर्चा में है, वो बात कर रहा है अपना अपना। वो अगले दिन वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए, वो वक्त आएगी, उसी टाइम वो लोकसभा को जो ऑनरेबल स्पीकर है उनको पास वो दबाव करेगी जो इनको हटाना चाहिए लोकसभा से नेता से, यही मेरा जानकारी है।
2: इंटरेस्टिंग दैट वेरी स्पेसिफिकली यू आर सेइंग दैट काकोली घोष दस्तीदार इज गोइंग टू बी लीडिंग अ डेलीगेशन ऑफ MPs एंड 20 आउट ऑफ 29 दैट द टीएमसी हैज इन द लोकसभा आर गोइंग टू सबमिट अ लेटर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ अभिषेक बनर्जी एज लीडर ऑफ द पार्टी। आप तो इतने वक्त तक तृणमूल के अंदर रहे हैं, इनफैक्ट 5-6 महीने पहले तक तो आप तृणमूल के अंदर ही थे, इस तरीके की नाराजगी आपने भापी थी कि नाराजगी है? और किसके खिलाफ है यह नाराजगी? दीदी के खिलाफ है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, या किसी और के खिलाफ नाराजगी है? क्यों?
3: देखिए, ये दीदी का पार्टी का चेयरपर्सन है TMC का। मैं 2023 साल के जो पंचायत चुनाव हुआ उसी टाइम से ये अभिषेक ने पार्टी को जनरल सेक्रेटरी होने के तरफ वो जो पंचायत चुनाव

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate.

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
2: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
3: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
4: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
5: ओडिशा का है, महाप्रभु जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
6: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
7: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
8: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
9: The news.
10: Ayush, since when do we do scripts?
9: Fair point.
10: Picture this.
11: The biggest stage. Floodlights.
10: Wow.
11: 4K. The works.
10: Where's the hook?
11: There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs.
10: Where's the hook?
11: Think about this. Front page advertisements and hoardings.
10: Bro, where's the hook?
11: Cross-platform, digital first, virality.
10: Without a hook, no way. The message is clear. It's 2026. You got to be real in a world of reels. You got to be original in a world where everything seems generated.
11: That's it. That's what we're looking for.
10: The best campaigns.
11: The hottest trends.
10: The smartest brand moves on our new show.
11: But wait, what do we call it?
10: The Hook.
12: What's the drum?
13: Full of these people.
12: Kolkata tram.
14: The highest number of voters.
15: Tamil Nadu votes decisive.
16: Kapra Tapri ka mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
17: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
18: TVK headquarters here.
19: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
12: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
4: Fast moving but still relaxed, informative but still unbiased.
17: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
5: Happy meeting NDTV team here.
1: Thanks for NDTV.
14: Padmija Joshi.
11: Shreyashi Dev.
10: This is Shreya Ghosh.
16: Rakhandeep Chaudhary.
3: Manoj Yalowiwal.
0: Deepak Bopanav.
18: This is Victor.
6: Tanushka Datta.
9: Sam Daniel.
17: Vika Ramaswamy.
7: Ritu Raj Purohit.
8: Shiv Arur.
19: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
19: द रिजल्ट्स विद द बीजेपी विनिंग मोर देन 200 सीट्स क्लियरली आंसर दोज क्वेश्चंस। आवर टीम्स ऑन द ग्राउंड इन द स्टूडियोज इन द न्यूज रूम विल कीप ट्रैकिंग एवरी ट्विस्ट। वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज, ट्राई टू यूज द इलेक्शन एनालिटिक्स।

0: supporting our move. And that transpired into what has happened yesterday.
1: Did you not raise this with the party itself, that why signatures had been forged within the party? Did you raise it with the leaders and, say, Mamata Banerjee herself?
0: With whom? With whom we would raise? We do not get a chance to speak to our leadership. If we question anything, then we are being told that I have tweeted, see the tweet, you'll get the answer. So in such kind of an ambience, there is no scope of asking any question or discussing anything. So who?
2: सिग्नेचर होता था मैंने पहले मैंने शुरू किया उसके बाद बमबल्ला शुरू किया उसके बाद यंग लड़का बोला दादा आप लोग ज़्यादा उम्र की है थोड़ा बैठ जाइए हम कर देता है
3: अच्छा
2: उसी टाइम में आई एम कॉन्फिडेंट इन हम कोई एक आदमी को सही लगा दिया कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं जो उस दिन 6 तारीख नहीं आया था 6 तारीख नहीं आया था
3: ऋतुप्रत बंदोपाध्याय कौन से बुजुर्ग नेता है वो यंग लीडर है वो भी अपना खुद सिग्नेचर वो खुद कर पाते थे कारण क्या हुआ कि इतने समय
2: उसका सिग्नेचर है हमारा पेपर में उसका सिग्नेचर है आई कैन शो यू आई गॉट दैट रेजोल्यूशन बुक आई गॉट विथ मी हम देखा सकता है आपको उसके उधर में ऋतुव्रत के भी है और जो संदीप उसको भी है दोनों ही सही किया तो उस दिन क्यों नहीं बोला ये गलत होता रहा हो रहा है पार्टी का अंदर में कुछ गलत हुआ तो पहले तो पार्टी को बोलना चाहिए था पार्टी का प्रेसिडेंट को लेटर दे सकता था पार्टी का प्रेसिडेंट के घर में जाके बोल सकता था कोई मीटिंग बुलाने के लिए कुछ सिग्नेचर भी दे सकता था ये हम लोग चाहता है कि मीटिंग बुलाइए मीटिंग बुलाइए तो मीटिंग में आके नहीं बोला वो सीधा चला गया स्पीकर के पास ये कोई पॉलिटिकल रास्ता नहीं है
4: And the opposition's India bloc is staring at fresh questions over its unity. The India Alliance is likely to hold a meeting on the 8th of June in Delhi to discuss their joint strategy to take on the BJP-led government and reinforce opposition unity. But while the Congress is projecting the meeting as a renewed attempt to strengthen opposition coordination, the political equations have changed dramatically with the Congress ending its ties with the DMK, moving closer to the TVK. The DMK is unlikely to attend while AAP has already distanced itself. And Mamata Banerjee is battling internal turmoil.
5: पार्टी को गठबंधन का इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है कि जैसे बिहार का गठबंधन निकला बिहार बंगाल का उसके बाद ममता जी ने पहला दिया कि मैं इंडिया गठबंधन की सहभागी हूँ उसके अंदर मेरा भी है तो वो मतलब उसके अंदर आएंगी लेकिन समय समय पर कई बार व्यस्तता के कारण नहीं भी आएंगे तो उनका प्रतिनिधि कोई ना कोई रहता था तो अभी वो खुद आ रही हैं तो अच्छी बात है गठबंधन को और एक मजबूती मिलती है उससे
6: I don't know what action they are taking. They will, if they have, as of now, Congress is not in India Alliance. Most of the parties are out of the Congress Alliance, including DMK. So now we have to wait and see what happens.
7: No, if there is an India Party Alliance meeting to take place, then of course CPI will join. CPI is still part of that alliance and nothing new in it. No, it's a welcome step, especially in this period of political uncertainty and after the elections of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Things are more confusing, so a meeting is the most welcome stand and if such a meeting is there, CPI will take part, no doubt at all.
8: Yes, India Alliance is absolutely, it is nothing there in, not only in Tamil Nadu, throughout India. And they were saying that only in Tamil Nadu, India Alliance was intact, but now after Congress, Communists, VCK, everybody left and Vaiko is telling that abusing DMK, the Indi Alliance is a total zero in Tamil Nadu. It is a fact.
4: All right, so questions over the future of the opposition India bloc. With that, we'll sip into a short break. More news on the other side.

0: used to stay at Abhishek Banerjee's flat. And always, all the member of parliaments, whether it is parliament time, usually she goes to parliament time, that Manoka knows very well.
1: Mm.
0: But when it's not parliament time, that time also, usually the Delhi MPs, she is very fond of to meet the member of parliaments in Delhi. Ek chai ka party, tea party, usually Abhishek ke ghar mein, that was the standard practice.
1: Okay.
0: This time, I heard that she is meeting the India partners, but not a member of parliament, because she is also scared that how many MPs will come, because she has also come to know that lot of contacts and communication is on. So I think it's a wall writing is very clear. Just like Rita Broto in West Bengal Assembly, the action will be repeated in Lok Sabha and Rajya Sabha. That is crystal clear.
1: You know, it's very important that you mentioned one MP is in London. And I just want to remind our viewers that when Arvind Kejriwal went to jail, even Raghav Chadha was in London. The rest, as they say, is history. Just stay with me, both Jayantuda and Manugya, because earlier, we also spoke to somebody who has made a very direct prediction. Somebody who's been a TMC insider, somebody who has his ear to the ground. We spoke to the chief of the Aam Janata Unnayan Party, Humayun Kabir, and he pulled no punches about what he thinks is going to happen in the TMC next. Listen in. आपने काफी सनसनी फैला दी है. आपने कहा है कि 20 सांसद जो हैं धन्यवाद. 20 सांसद आपने कहा है तृणमूल के टूटने वाले हैं. कौन है ये 20 सांसद?
2: मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा को पास पता है जो 58 एमएलए जो टीएमसी ममता बनर्जी को नेतृत्व छोड़ के अभिषेक बनर्जी को खिलाफ आवाज उठाए, मुद्दा उठा के वो जो असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर को पास जाके जो 58 विधायक जो दबाव किया, वो उनके मुताबिक वो ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको एलओपी में चेयर दे दिया, वो अपोजिशन में बैठा दिया कल. तो मेरा ख्याल से जो लोग ये सब मुद्दा उठा रहे, जो बात कर रहे, तो वो अगले दिन लोकसभा में भी जो 29 एमपी है, 29 टीएमसी का जो एमपी है, उनको जो नेता चुना गया अभिषेक बनर्जी को, उनको खिलाफ भी ये मुद्दा उठाएगी. मेरा जो पता है, खबर है, जो 20 एमपी में उनको खिलाफ, उनको नेता से, लोकसभा से नेता, टीएमसी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेता से हटाने के लिए एक कदम उठाएगी.
1: यानी कि आप कह रहे हैं कि 20 जो सांसद हैं वो सिर्फ लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं और अलग हो जाएंगे. 29 में से 20 अलग हो जाएंगे लोकसभा में.
2: जी हाँ.
1: क्या इसको लेकर के कोई मीटिंग भी हुई है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ सांसद जो है दिल्ली आए थे कुछ मीटिंग करने के लिए. आपने कुछ ऐसा सुना है कि टीएमसी के सांसद दिल्ली में कोई मीटिंग किए हैं?
2: हाँ, वो सारे चल रहा है, ये चर्चा चल रहा है. वो जो बारासात का जो एमपी है काकुली घोष दस्तीदार, उनको लेके सारे कोई एमपी है जो चर्चा में है, वो बात कर रहा है अपना. वो अगले दिन वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए, वो वक्त आएगी. उसी टाइम वो लोकसभा को जो ऑनरेबल स्पीकर है उनको पास वो दबाव करेगी जो इनको हटाना चाहिए लोकसभा से, नेता से. यही मेरा जानकारी है.
1: इंटरेस्टिंग दैट वेरी स्पेसिफिकली यू आर सेइंग दैट काकोली घोष दस्तीदार इज गोइंग टू बी लीडिंग अ डेलीगेशन ऑफ एमपीज एंड 20 आउट ऑफ 29 दैट द टीएमसी हैज इन द लोकसभा आर गोइंग टू सबमिट अ लेटर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ अभिषेक बनर्जी एज लीडर ऑफ द पार्टी. आप तो इतने वक्त तक तृणमूल के अंदर रहे हैं, इनफैक्ट 5-6 महीने पहले तक तो आप तृणमूल के अंदर ही थे. इस तरीके की नाराजगी आपने भापी थी कि नाराजगी है? और किसके खिलाफ है यह नाराजगी? दीदी के खिलाफ है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, या किसी और के खिलाफ नाराजगी है? क्यों?
2: देखिए, ये दीदी का पार्टी का चेयरपर्सन है टीएमसी का. मैं 2023 साल के जो पंचायत चुनाव

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से

0: press that there were some major facts that were hidden. They were also they also made these points that there was not proper disclosure of number of staffs employed in this particular place and other details. So they pressed for the custody, the 4-day custody for further investigation, and that's why the court really granted them custody. However, Lavkesh Bajaj's lawyer really argued in court that it was not he who was responsible for the same, and it is a fire incident, and why custody is needed. But court clearly seemed convinced that a 4-day custody for now is needed, and that's why they have been sent to police custody for 4 days.
1: Of course, Nupur, more questioning to be done, and look out, notice for Jaya Mishra. Thanks for sharing that very crucial update. Take a listen to the account of eyewitnesses and a rescuer as well who saved a lot of lives here. Take a listen. जाने आप हमें बता सकते हैं कि इस तरह का के यहाँ पे और कितने सारे ऐसे और बिल्डिंग्स हैं?
2: ये लगा 3-4 हैं. यहाँ पे बगल में ही इनके ये होटल है, 3-4 है, ऐसे ही हैं.
1: तो बहुत फॉरेन नेशनल्स आते थे रहने के लिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल के आसपास है, क्योंकि यहाँ के रहने के बहुत अफोर्डेबल है.
2: हाँ, बहुत आते थे, और जो विजिटिंग करने आते हैं यहाँ पे इंडिया वगैरह वो भी होते हैं, और यहाँ पे पास में मैक्स हॉस्पिटल है, उनको पेशेंट्स होते हैं वही दिखाने आते हैं. लोग आउट ऑफ कंट्री के ही होते हैं.
1: बट सेफ्टी के इधर कितनी इशू है, क्योंकि हम देखते हैं वायर भी हैंग हो रही है, एक एंट्री है. क्या सारे होटल्स में एक ही एंट्री एग्जिट है?
2: हाँ, इन सब में एक ही एग्जिट और एंट्री है. यहाँ पे वायर के वही से ज़्यादा आग लगी थी, और ये यहाँ पे कोई भी वो है ही नहीं, सुविधा है ही नहीं है कि मतलब कि एक एग्जिट होना चाहिए, कोई एंट्री होना चाहिए, है ही नहीं. बस एक ही एंट्री गेट है और एग्जिट है.
3: मैम, मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे घर से आया जब मैं इस टाइम यहाँ पे, तो मैंने देखा एक मालवीय नगर थाने के हैं दिनेश यादव, पुलिस वाले जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे अकेले थे. उन्होंने सिर्फ 6 बंदों को ऐसे निकाला, अपनी रिक्स पे निकाला, जान पे बिल्कुल. उन्होंने बेचारों ने इतनी हेल्प करी, उनके साथ कोई नहीं था, ना दिल्ली पुलिस पहुँची थी इस टाइम पे इतने, बस वो सिर्फ पुलिस वाले अकेले यहाँ पे थे. फिर एकदम फायर विकेट आई है, कम से कम 30 मिनट लेट आई थी यहाँ पे. उन्होंने इतने सिर्फ 6 बंदों को नीचे उतारा, फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने,
1: फायर ब्रिगेड कितनी लेट आई थी?
3: 30 मिनट लेट थे फायर ब्रिगेड. तो यहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने फिर, यहाँ एक दुकान है शॉप है गद्दे की, उसके गद्दे वगैरह यहाँ पे बिछाए उन्होंने. फिर ऊपर से जो बाहर मतलब लोग थे ऊपर से उन्होंने जंप करवाया इधर. तो उसके बाद दिनेश जो थे उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह में उनको करवाया, उसके बाद जो सब आने लगे फायर ब्रिगेड सब. उसके बाद फिर लॉक वगैरह हो गए सब, ऊपर के डोर वगैरह खुले नहीं, बंदे वहाँ से अपना हाथ मार रहे हैं पर वो लॉक नहीं खुले वहाँ पे. शीशे वगैरह सब लॉक थे, शीशे वो ऐसे थे हमने पत्थर मारे तो शीशे नहीं टूटे, वो इतने
1: किस टाइप के शीशे थे, क्योंकि हर ऐसे तरह के बहुत बिल्डिंग्स है इधर, और हर बिल्डिंग का सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट गेट है.
3: इसमें भी वही सेम है, एक ही है, कोई मतलब पीछे का रास्ता नहीं है कि अगर बंदा कुछ एमरजेंसी में फंस जाए पीछे से निकल जाए. इसमें सिर्फ मैन है और वो भी लॉक था.
1: Even as investigation is going on and fresh details emerge, just like Flourish Inn here, owned by Lavkesh Bajaj and his partners, he also owns similar properties in this locality. My colleague Tejshree bringing you more details about that.
4: NDTV has exclusively managed to reach to the basement of another property of a Flourish Stay, and we are actually in the basement of another property which is just 200 to 300 meters from the very place where the incident took place, or I should say a man made disaster. And here, in fact, what we'll be showing you is actually quite surprising and shocking. There in the basement was only a restaurant that was running illegally, but here is a complete floor, viewers. This is a complete room, a two bed bedroom, which in double bed bedroom, which is completely functional. You can see proper television, AC, fan, and a geyser, everything is installed. Almiras are there, and not just one room. There are 1, 2, 3, 4, and in total 5 rooms being constructed, and all were operational, completely functional. Some medicines are also kept over here. It seems like they are for the probably a patient could have been staying over here because the hospital is nearby. So the manner in which, you know, this entire hotel is functioning actually from the basement is raising serious questions on the administration. The incident has just taken place over there, and how in fact this hotel was running in basement since past so many years. Why were the authorities unaware about the fact? कल जब आप गए वहाँ पर तो आप किस तरह से जो गेस्ट थे वहाँ पर वो किस कंडीशन में थे? कोई
5: एहतियात मैम, अंदर का मंजर जो था वो बहुत खौफनाक था। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा बेसमेंट से ही हमने अंदर घुसे, हम फायर फाइटिंग एंड दिल्ली पुलिस के साथ। जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक 25 ईयर ओल्ड लड़की थी जो रिसेप्शन के पास पूरी जल चुकी थी, जिसके दोनों हाथ और पैर अकड़े हुए थे। जिसको सबसे पहले हमने बाहर निकाला वो ब्रॉड डेड थी। उसके बाद आगे गए एक पेशेंट
4: के पास, ऐसी
5: हाँ गड़ी हुई थी रिसेप्शन के पास, 25 ईयर ओल्ड होगी लगभग उसकी है, जो अकड़ी हुई थी प्रॉपर। और जब हम उससे आगे बढ़े तो एक व्हीलचेयर पे शायद वो पेशेंट ही था, वो पूरा जल चुका था, व्हीलचेयर पे बैठा हुआ।
6: क्या है कि हम जब उस होटल में गए तो अब हमने देखा कि मेन स्टेट से वो सेंटर में बनाई हुई है, उसके अलावा कोई एग्जिट गेट नहीं है, एक ही गेट बना हुआ था। अब बाकी जो होटल्स यहाँ पे चल रहे हैं वो लीगल हैं इलीगल हैं मैम, वो हमारा काम नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, वो प्रशासन की जॉब है। प्रशासन क्या करता है, किसकी मिली भगत से चल रहे हैं।
4: Condition if somebody has to come upstairs to rescue himself, or in fact he must have been thinking that I can go out from this door, I can go out to the terrace and breathe some air so that I can save my life. But what he gets over here, this door which is locked from outside. Why the door is locked from outside? You see, there are these big wires, these big meters, large meters on my right and left hand side, and in fact if the fire reaches over here it could result into a massive blast as well. The questions are seriously being raised about why the door is being locked, and no help could also in fact reach over here. You see these windows are also completely unbreakable. If somebody wants to just gasp there, that is also not possible because nobody can break this window as well. And apart from this, several lapses have been reported in this building as well, from basement to first floor to third floor to a fourth floor where we are reporting right now, and the similar kind of lapses in the floristry as well. Serious questions being raised that how is it possible that in the South Delhi, in the heart of Delhi, these all lapses are neglected by the authorities coming into action after the accident, or I should say a man-made disaster. With camera person Rakesh Mahale, this is Tej Shree for NDTV from Delhi.
1: All right, on that note we slip into a very short break, but we continue to ask here on NDTV as to who is supposed to be held responsible for the 21 lives lost right here in South Delhi's Malvanagar.

0: you're watching Nationwide at 6. I'm Gauri Dwivedi. The big story that we are focusing on is the statement made by Leader of Opposition Rahul Gandhi. Even as the BJP says, this is fear-mongering. Let's get you details about what exactly the Leader of Opposition said there. Why is it that it has caused such a flutter? And more importantly, what does the data really say? Congress MP Rahul Gandhi has sparked a fresh political storm with a series of explosive remarks, warning that India could be headed towards an economic tsunami. Addressing a gathering, Rahul Gandhi claimed that the country is witnessing signs of an internal rebellion, alleged that the ongoing economic situation could trigger widespread turmoil. He also said that Prime Minister Modi may not even be in office after a year, while also expressing fears that the BJP could impose a state of emergency in the future. The remarks triggered sharp political backlash, with the BJP accusing Rahul Gandhi of spreading fear, of spreading misinformation. BJP called Rahul Gandhi leader of propaganda, alleged that it is the Congress and not the country that is facing an internal revolt. I'm going to play out some of those reactions for you, and then we're going to get the two primary sides of this discussion, the BJP and Congress, to understand what really is the reason why Rahul Gandhi made those comments and where exactly the state of the economy is right now. Take a look.
1: ऐसी economic crisis आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने life में नहीं देखी होगी. ये हो रहा है. इसको आप कोई रोक नहीं सकता है. दूसरी तरफ क्या हो रहा है? हिंदुस्तान के अंदर system के अंदर institutional revolt हो रहा है. Chief Election Commissioner के messages मेरे पास आ रहे हैं. Head of intelligence system, senior judiciary, सारों के सारे revolt कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें. तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से वो कलैप्स कर रहा है. सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है. अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है. बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं. पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. मेरा असेसमेंट है एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे.
2: राहुल गांधी अपना भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं. अपना भविष्यवाणी राहुल गांधी कांग्रेस के खात्मा का, जैसे ये मुगलिया संतलंत के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर जफर शाह. कांग्रेस मुगलिया संतलन यानी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस अंतिम संतलक राहुल गांधी होंगे खात्मा के.
3: अगर राहुल जी ने जो कहा है क्या वो दिख नहीं रहा? आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. मोदी जी अपील कर रहे हैं कि कम खर्ची की जाए, ये अलग बात है कि पांच पांच जगहों पर देशों की यात्रा खुद 8,500 के विमान से करते हैं. तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, गिरावट ही होती जा रही है. तो नेता प्रतिपक्ष ने सही आकलन किया कि आर्थिक रूप से सुनामी आएगी.
0: सो थ्री ऑफ दोज कॉमेंट्स दैट राहुल गांधी हैज मेड मेरिट्स नॉट जस्ट डीपर डिस्कशन डायलॉग बट ऑल्सो इंट्रोस्पेक्शन. एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन जस्ट दोज एस्पेक्ट्स, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इज देयर इन फैक्ट फियर मोंग

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: वी एट एनडी टीवी ट्रैवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वेस्ट बंगाल। दिस वाज द हॉटेस्ट इलेक्शन इन ऑल ऑफ इंडिया। All of India watched it on NDTV.
2: Why I say this, this could be a big story.
3: Thank you.
1: Stories that no one else had.
4: The memorial they have built is not just for Avicii.
1: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
5: इस वक्त यहाँ पर अफरातफरी का
1: moments that gave competition viral fever.
6: हबीब का गुंडा हमला किया।
7: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा।
8: बंगाल बचाने का वोट।
9: Fight for justice. Fight for every woman here.
1: When it was anything Bengal,

0: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on the day's biggest story, the buck stops here. And what everyone is talking about, Rahul Gandhi has given a dire warning that there is going to be a revolt in the country, an institutional revolt. And guess what? You've got the chief election commissioner, the head of the judiciary, the head of intelligence, all messaging Rahul Gandhi and telling him that. Who's going to lead this revolt? What does this really mean? We'll talk about that in detail. And at 8:30, speaking of a revolt, Mamata Banerjee is facing plenty of that. It started in West Bengal, and could it now go all the way to New Delhi after losing her MLAs? Could Didi now end up losing her MPs as well? Serious trouble. But who are these MPs? We'll get a hint from a former insider, somebody who has his ear to the ground. We are talking about Humayun Kabir. All of that and much more coming up in a matter of a few minutes. But right at the top, that big, big political story. Rahul Gandhi today detonated a fresh political bomb, the revolt bomb. That's right. The leader of opposition in the Lok Sabha has warned of an institutional revolt, claiming that the Modi government is losing control of the system as people's anger is now bubbling over. Rahul Gandhi said that the system is now shaking from within. So much so that the chief election commissioner, senior members of the judiciary, as well as the head of intelligence are passing on information continuously to Rahul Gandhi. They are telling him everything about Narendra Modi, about Amit Shah. Yes, the same institutions which Mr. Gandhi has attacked in the past are now apparently reaching out to him directly, and it doesn't stop there. Rahul Gandhi further raised the specter of an emergency, suggesting that the government, now completely out of control, they simply cannot control the system anymore. Now the center could resort to something similar. They could even impose emergency simply to diffuse the public pressure or to simply put a lid on it. The BJP naturally has hit back at this suggestion, dismissing it as a classic case of fear-mongering, and they have accused Rahul Gandhi of displaying an anarchic mindset. So tonight we ask, is this a genuine political warning of a system under pressure, of a brewing revolt, of a country that is being held down too much and too far, or a carefully crafted narrative to drive fear?
1: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशियरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है, और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
2: अगर राहुल जी ने जो कहा है, क्या वो दिख नहीं रहा, आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
3: द इकोनॉमिक क्राइसिस इज रियल, दे हैव सोल्ड टू 12 बिलियन डॉलर्स टू सेव द रूपी दे आर सेलिंग द गोल्ड ऑफ द कंट्री इट इज क्वाइट नेचुरल बिफोर द पीपल रियलाइज दिस एंड दे विल कम आउट टू द स्ट्रीट्स।
4: भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक है, आज भी इमरजेंसी का ऐलान हो या ना हो, इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात हैं देश के अंदर। बगैर ऐलान किए इमरजेंसी लगी है। क्या आप देख नहीं रहे कि सारी एजेंसीज पे सरकार का कंट्रोल है?
5: राहुल गांधी जी चुनाव हारते रहते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, 3 बार पूरी तरह हार गए हैं और असेंबली में हारते जा रहे हैं, तो उसका गलती खुद होगा, कांग्रेस का अपना राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी की गलती होगा। हमारा गलती क्या है? हम तो लोगों का सेवा करते हैं और मोदी जी के नाम से लोग वोट देते हैं, समर्थन देते हैं और हम देश का सेवा करते हैं, तो इसमें देश कैसे होगा? कांग्रेस जीतने से डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा क्या?
6: राहुल गांधी अपना भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपना भविष्यवाणी राहुल गांधी कांग्रेस के खात्मा का, जैसे ये मुगलिया संतलंत के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर जफर शाह, कांग्रेस मुगलिया संतलंत यानी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस अंतिम संतलंत राहुल गांधी होंगे खात्मा के।
7: राहुल इज एन एनार्किस्ट मैन और जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं।
0: Okay, so let's take that question across to Sanju Verma, spokesperson, national spokesperson of the BJP, political analyst Satushar Gupta, Shubhankar Bhattacharya. We also have with us Priyanka Bharti, national spokesperson of the RJD. But that first question I want to put to you, Ashutosh, senior journalist and political analyst, because you have been watching what happens in the country. When you listen to Rahul Gandhi, do you genuinely think that the country is headed for a revolt from within the system?
8: See, Padmija, that's a battle between the Congress and the BJP, and both should answer the questions, are the accusations made against each other? But one thing I'm very sure, and I partly agree with what Rahul Gandhi has said about the economics. And forget about Rahul Gandhi. Forget what Rahul Gandhi is saying. Don't take him seriously. But at least the government should take seriously the two individuals who had worked with the government. One is Dr. Surjit Balla. And Dr. Surjit Balla has written an article and has said that BJP is winning election one after another. But what about economy? He has said in 2013, India's economy was among the fragile five. And he said today that fragile five have become fragile two. That means India and Turkey. Then there is another gentleman who has worked as a finance secretary with the Narendra Modi government. His name is Subhash Chandra Garg. He wrote an article in Deccan Herald. And he said from fragile five to vulnerable one. Just imagine. So, you don't take Ashutosh seriously, you don't take Rahul Gandhi seriously, you don't take Priyanka seriously, because we are supposed to be the critic of the government. But the fact of the matter is, these people, Dr. Surjit Balla has worked as a member of Economic Advisory Council. He was an executive director of IMF. And Dr. Subhash Chandra Garg has worked as a finance secretary. Closely worked. He wrote a book on Mr. Narendra Modi and he praised Narendra Modi. Now, if these people are saying that Indian economy is not in good shape, or rather in mess, and if Dr. Surjit Balla says that from fragile five, we are into the fragile two, along with Turkey, and Subhash Chandra Garg saying, forget about Turkey, we are not comparison with Turkey, India today is a vulnerable one. I think the government should take it seriously, and the country should also take their words seriously, that there is something wrong with the economy, and people are upset.
0: Sanju Verma, it's not just about the economy. There are a variety of factors. Look, when Rahul Gandhi speaks, he is saying there is pent-up anger, and now such is the anger bursting forth that people within the system are scared. Like they say, when the people start marching, the institutions cannot withstand that pressure. So it's not just the economy. It is the neat paper leak. You've got more and more people speaking up against it, the economic hardship because of the war. And eventually, even though you may mock Rahul Gandhi, you would be ill-advised to ignore the warning signs.
9: You know, Padmaja, let me make a couple of points here very quickly on the political bit. I'll come, but since Ashutosh started off, by talking about the economy, it's only fair that I make some points for your audience's benefit. What Surjit Bhalla says, with no offense to him, what former

0: election commissioner must be watching this show, and he should be making up his mind whether he should issue a statement regarding this or not. That's a separate issue. See, the fact of the matter is there is a crisis in the country.
1: Very bad debate.
0: And that crisis, whether you, me, everybody is suffering from that crisis. And it is not an accident of history that Dr. Surjit Bala, such an eminent economist, who worked with the government, and Subhash Garg is basically hinting at that. So if Rahul Gandhi is saying there is economic tsunami, why we are not taking him seriously? And
2: because
0: I completely
2: things are so
0: disagree.
2: Bad, Ashutosh ji. Why is the opposition losing state after state after state? Why is it that you lost in Assam, you lost in West Bengal, which was completely unprecedented? Surely people in West Bengal also must be feeling the same kind of pain that Rahul Gandhi is feeling. They should have said, to hell with the BJP, let's continue with the Trinamool.
0: That's a different debate altogether. That's a politics of it. I'm only telling you that Tushar Gupta has just said the crisis is because of the Iran war. I can cite you n number of data. The foreign portfolio investment outflow is growing on a daily basis. How the net FDI is almost zero.
2: Okay.
3: Let me reframe my question.
2: Taking all of your arguments on board, you're saying that the Trinamool was such a bad option for the people of Bengal that they said, even though the BJP has taken us into the dumps, even though we are suffering because it's bad economic policies, we will still vote for it. That's how bad an option the TMC was.
0: At least the election results hints at that point.
2: Okay, Sanju Verma.
0: Hints towards that.
2: It's not no, because not, you're I'm doing not, a good job, it's because I'm, the TMC was even worse than you. Sanju Verma.
1: You know, Padmaja, with no offense to Ashutosh, I've been on a brilliant debate with him. Haryana Chunao ke pehle 2024, BJP came back to power for the third time running. Ashutosh ne kaha tha, jaat samudaya is par BJP...
0: Madam, tsunami pe aa jaiye. Haryana bahut dur hai.
1: I did not heckle you, Ashutosh. Maharashtra Chunao ke natijo se pehle, Ashutosh ne dunke ki chot par kaha tha, Maharashtra mein BJP will be wiped out. And Ashutosh had a nice big fat omelette on his face. Today he's smiling sheepishly. And let me tell you one more thing. Padmaja ji,
0: I enjoyed that omelette.
1: June 2024 ke baad, assembly elections were held in 11 states, including Delhi, half state. BJP won 7 out of 11 of these states with a strike rate of 64%. Congress won only one state, Kerala, with a strike rate of 9%. अब जिस पार्टी को 64% स्ट्राइक रेट मिला है, आशुतोष से कौन सी बड़ी बात है? राहुल गांधी is still the next best thing after brown bread. And let me say one more thing. In a democracy, जनता जनार्दन है, जो जीता वही सिकंदर. If you cannot win elections, you will not be able to bring about the change that you talk about from every platform. और यही राहुल गांधी ने, पद्मजा जी, since you said राहुल गांधी got it right. राहुल गांधी after 2014 said 2019 में मोदी जी का आना मुश्किल है. 2019 जब मोदी जी आ गए, राहुल गांधी ने कहा 2024 में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे. राहुल गांधी जी, आप कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मोदी जी विल बिकम पीएम इवन इन 2029. सो प्लीज ब्रिंग डाउन योर ओवर कॉन्फिडेंस.
2: ओके, तेजस्वी यादव बनेंगे. प्रियंका भारती वांट्स टू रिस्पॉन्ड.
4: I'll
2: come to you in 10 seconds. Yes, Priyanka Bharti.
4: Padmaja ji, I'm just wanting to respond. If everything is all right, why is BJP spokey so agitated? Why is Tushar Gupta so agitated? I mean, might be they are reading the articles of economic advisors of the PM, Surjit Bhalla, Arvind Subramaniam, who all are writing BJP might win, but they are losing the economic battle. Article 4 ki tension ho rahi hai na andar se. Bahut tension ho rahi hogi. और देश को भी टेंशन हो रहा है पद्मजा जी. आई मीन जस्ट लुक एट द पीएम, ही डज ऑर्गेनाइज, ही ऑर्गेनाइजेस मीटिंग विद द कैबिनेट मिनिस्टर टू डिस्कस कौन सा मंत्री कितना लीटर पानी पिएगा.
2: ओके, ओके, यू नो आई थिंक नो वन नीड्स टू बी एजिटेटेड. इट्स टू लेट इन द डे फॉर एजिटेशन. इट्स टाइम टू सेटल डाउन, हैव योर डिनर. बट द बिगर पॉइंट इज, everyone agrees whenever there is a crisis, and yes, with a war underway, there is problems that India is also facing. But will that turn into a full-fledged mutiny, and that to a mutiny from within the system? I think the voter, the people of India, are far too wise, far too smart. They've seen many governments, many elections, and they've given their answer time after time, year after year. Thanks very much, all gentlemen, and Priyanka Bharti for having joined me. So what exactly is happening now to the Trinamool Congress? It has been exactly a month since the election results. First, the party saw a split at the level of the state. But now the bigger worry for it is that going to be replicated at the center as well? Will the action now shift from Kolkata to New Delhi? Because a dire prediction has been made. Sources have told NDTV that at least 20 MPs of the Trinamool are in talks with the leadership of the BJP. Meetings have been held. And could this really come true? Let's go across to somebody who has been inside the TMC, who has his ear to the ground, Humayun Kabir. The big buzz now in West Bengal is you already have 3/4 of the TMC MLAs splitting. Are the MPs going to be next? And in fact, somebody who's been an insider in the Trinamool and has made a rather startling prediction is Humayun Kabir. Now an independent MLA, in fact, an MLA from his own party, the Janata Unnayan Party. He joins us now on NDTV. Humayun Kabir ji, bahut bahut dhanyawad humse baat karne ke liye. Aapne kaafi sansani phaila di hai. Aapne kaha hai ki 20 sansad jo hain dhanyawad. 20 sansad aapne kaha hai Trinamool ke tootne wale hain. Kaun hai ye 20 sansad?
3: नहीं नाम नहीं लूँगा लेकिन मेरा को पास पता है जो 58 MLA जो TMC ममता बनर्जी को नेतृत्व तो छोड़ के अभिषेक बनर्जी को खिलाफ आवाज़ उठाए मुद्दा उठा के वो जो असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर को पास जाके जो 58 विधायक जो दबाव किया वो उनके मुताबिक वो ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको LOP में चेयर दे दिया, वो अपोजिशन में बैठा दिया कल. तो मेरा ख्याल से जो लोग ये सब मुद्दा उठा रहे, जो बात कर रहे, तो वो अगले दिन लोकसभा में भी जो 29 MP है, 29 TMC का जो MP है, उनको जो नेता चुना गया अभिषेक बनर्जी को, उनको खिलाफ भी ये मुद्दा उठाएगी. मेरा जो पता है, खबर है, जो 20 MP में उनको खिलाफ, उनको नेता से, लोकसभा से नेता, TMC पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेता से हटाने के लिए ये कदम उठाएगी.
2: यानी कि आप कह रहे हैं कि 20 जो सांसद हैं वो सिर्फ लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं और अलग हो जाएंगे. 29 में से 20 अलग हो जाएंगे लोकसभा में.
3: जी हाँ.
2: क्या इसको लेकर के कोई मीटिंग भी हुई है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ सांसद जो है दिल्ली आए थे कुछ मीटिंग करने के लिए. आपने कुछ ऐसा सुना है कि TMC के सांसद दिल्ली में कोई मीटिंग किए हैं?
3: हाँ, वो सारे चल रहा है, ये चर्चा चल रहा है. वो जो बरासात का जो MP है काकुली घोष दस्तीदार, उनको लेके सारे कोई MP है जो चर्चा में है, वो बात कर रहा है अपना अपना. वो अगले दिन वेट कर लीजिए, कुछ समय वेट कर लीजिए, वो वक्त आएगी उसी टाइम वो लोकसभा को जो ऑनरेबल स्पीकर है उनको पास वो दबाव करेगी जो इनको हटाना चाहिए लोकसभा से नेता से. यही मेरा जानकारी है.
2: इंटरेस्टिंग दैट वेरी स्पेसिफिकली यू आर सेइंग दैट काकोली घोष दस्तीदार इज गोइंग टू बी लीडिंग अ डेलीगेशन ऑफ MPs एंड 20 आउट ऑफ 29 दैट द टीएमसी हैज इन द लोकसभा आर गोइंग टू सबमिट अ लेटर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ अभिषेक बनर्जी एज लीडर ऑफ द पार्टी. आप तो इतने वक्त तक तृणमूल के अंदर रहे हैं. इनफैक्ट 5-6 महीने पहले तक तो आप तृणमूल के अंदर ही थे. इस तरीके की नाराजगी आपने भापी थी कि नाराजगी है? और किसके खिलाफ है यह नाराजगी? दीदी के खिलाफ है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, या किसी और के खिलाफ नाराजगी है? क्यों?
3: देखिए, ये दीदी का पार्टी का चेयरपर्सन है TMC का. मैं 2023 साल के जो पंचायत चुनाव हुआ उसी टाइम से ये अभिषेक ने पार्टी को जनरल सेक्रेटरी होने के तरफ

0: वो जो पंचायत चुनाव में जो थ्री स्टार पंचायत का मेंबर है, पीएस का मेंबर है, जेडपी का मेंबर है, इनको पैसा लेके आईपैक को अंदर अंदर घुसा के पैसा लेके टिकट दिलाया। तो उसी टाइम मैं खुद ममता बनर्जी को ये नज़र में लेके आया, इनको खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे बार मुद्दा उठाया, बोला, लेकिन वो मेरा बात का कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गुरुत्व तो नहीं दिया। वो अभिषेक जो किया पार्टी के लिए वही वो सील मोहर दे दिया, वही वो अप्रूव कर दिया। तो मेरा आज का दिन बहुत सारे आदमी ममता बनर्जी को खिलाफ़ बोल रहा है, अभिषेक को हटाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसी टाइम तो कोई मेरा बात भी नहीं सुना, मेरा बात को सपोर्ट भी कोई आदमी नहीं दिया। मेरे को पार्टी से सोकोच किया दो बार, एक बार वार्निंग नोटिस भी दिया। बाद में तो 4 दिसंबर 2025 मेरे को तो निकाल दिया पार्टी से। तो मेरा यही रिजीम या यही मुद्दा उठाने का टाइम मेरा तो कोई गुरुत्व तो नहीं दिया।
1: तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बगावत हो रही है ये अभिषेक बनर्जी और आईपैक की वजह से है और करप्शन की वजह से, कट मनी पैसा।
0: हाँ, वही तो पार्टी को ऐसा कट मनी खा के पैसा लेके जो जहाँ जा किया। तो ममता बनर्जी पार्टी का सर्वोच्च नेत्री होने का वो क्यों करने दिया? वो तो राश उनका हाथ में था, लेना चाहिए, उनका पास में ही एक उनका विधायक चुनाव गया, उनका टिकट दिया 2021 में। तो मैं ही उनको पास जाके कोई जजमेंट नहीं पाएगी तो कैसा चलेगी?
1: तो यानी कि दीदी को पता था कि क्या चल रहा है ये कट मनी का मामला, पर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया?
0: सब कुछ पता था ना, सब कुछ पता था। इतना हिम्मत किसी को नहीं होते, जो दीदी को पता नहीं होते तो दीदी ऐसा काम दीदी को नॉलेज ना देके। दीदी तो खुद जो रैली में बात करे वो बोले मेरा सब पता है, सब कुछ जानकारी है, दीदी खुद दबाव डालते, लेकिन किसी को बात नहीं सुनना चाहते। वो इनका भतीजा को जो जो कर रहा वही वो अप्रूव कर दिया।
1: क्योंकि हुमायूं कबीर जी जो कल लोग अलग हुए हैं, 58 जो 58 एमएलए थे उनमें से 17 एमएलए जो हैं वो मुस्लिम हैं, और कुल 34 एमएलए जो मुस्लिम्स हैं, और ये तो सबसे लॉयल जो ग्रुप था जो हमेशा टीएमसी को वोट करता था, आपको चुन के भेजता था। और मैं ये देख रही थी कि टीएमसी के इस बार 8 एमएलए चुन के आए मुर्शिदाबाद से, 8 के 8 अलग हो गए, ये कैसे हो गया? जो लोग हमेशा दीदी के पीछे खड़े रहते थे, 8 के 8
0: मुर्शिदाबाद में 9 चुना मुर्शिदाबाद में 22 सीट से टीएमसी को 9 चुना गया। एक बाबर अली वो जलंगी का 76 जलंगी का विधायक है, वो ज़्यादा कम उम्र है और पहले वो पार्टी भी नहीं किया, उनको टिकट दिया गया, वो चुनाव गया, वो नहीं आया। बाकी 9 से 8 वो ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को खिलाफ जाके, और ऋतुव्रत जी संदीप साह को सपोर्ट दे के सिग्नेचर भी किया कल।
1: क्यों
0: असेंबली में स्पीकर?
1: ये तो सबसे मजबूत इलाका था ना ममता बनर्जी का, मुर्शिदाबाद, मालदा, मुसलमान वोट हमेशा कहते थे टीएमसी को मिलता ही मिलता है, ये क्यों अलग हो गए?
0: अभी भी मिला, चुनाव में तो वोट ज्यादा से ज्यादा मिला, मुसलमान लोग ममता बनर्जी को पार्टी को ही वोट दिया। वो हार गया लेकिन 2,60,00,000 से ज़्यादा वोट मिला टीएमसी का, और जो बीजेपी के जीता उनको 2,93,00,000 से ज़्यादा वोट मिला। तो 33,00,000 से वो सत्ता में आ गया, ये अपोजिशन में गया। लेकिन ममता बनर्जी पहले से कोई अच्छा ध्यान से अच्छा तरीका से उनको लीडरशिप देते, कोई अभिषेक के ऊपर कोई नहीं छोड़ते, तो आज के यही हालत में नहीं पहुँचाते।
1: तो मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ,
0: नहीं लेते
1: कि जो लोगों को सबसे ज़्यादा इस बात का अमेजमेंट हो रहा है कि मुसलमान एमएलए तो कम से कम टीएमसी के साथ रहते, वो क्यों नाराज़ है दीदी से, वो क्यों अलग हो गए?
0: देखिए, ये जो मुसलमान जितना सारे 34 जीता टीएमसी का मुसलमान एमएलए, उनके 17 से 18 चला गया इनको खिलाफ, वो चले जाने का यही तरीका है, उनका अपना अपना कोई ना कोई गलत काम से जुड़ा हुआ है। उनको खिलाफ कोई सत्ताधारी पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई पुलिस को दे के, कोई ईडी के लगा के, एनआई के लगा के, कोई सीबीआई के लगा के, कोई उनको खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, ये डर से ये यहाँ कर रहा है। ममता बनर्जी को साथ छोड़ा, मेरा ख्याल से यही होना चाहिए, यही हो।
1: हुमायूं कबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
0: छोड़ दीजिए दीदी,
1: ठीक है, जाते जाते ये बताइए आपकी बाबरी मस्जिद अभी भी उस पर काम जारी है या बंद हो गया है?
0: नहीं नहीं, काम जारी है, काम जारी है।
1: All right. That was Humayun Kabir, somebody who's been an insider in the Trinamool Congress, now an MLA of his own party, has won handsomely in 2 seats in the Murshidabad area, but is making a prediction that the beginning has been made in the assembly, but next is going to be the Lok Sabha. 20 MPs willing to break away, followed by the Rajya Sabha.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
1: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: और सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे जो कंटेनर है उसके ऊपर जो ये जेसीबी की जो ये क्रेन का हिस्सा जो गिरा वो किस तरह से कंटेनर जो है वो दब गया, और इसी में दबने की वजह से जो मजदूर अब तक निकाले गए हैं उनकी संख्या 4 जो आधिकारिक तौर पर डीसीपी की तरफ से बताई गई है, और उनमें से 3 मजदूरों की जो मौत है वो हो गई। दोपहर में 3 बजे के आसपास जो ये घटना है वो हुई है। गैंट्रिक क्रेन ये सामने अगर हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाएं तो ये जो हिस्सा आप देख पाएंगे ये सामने सीधा इन तस्वीरों में नजर आएगा, ये जो गैंट्रिक क्रेन है नीचे यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसको मेरे कैमरा पर्सन मुकेश इस्टेब्लिश करेंगे ये तस्वीर। ये जो ट्रैक है इस पर ये जो गैंट्रिक क्रेन है इस पर रहती है, और यहीं पर जब दोपहर के समय जब मौसम ख़राब हुआ और उसके बाद ये जो हिस्सा अचानक से जो डिसबैलेंस है वो हो जाता है, और जिसके बाद इस गैंट्रिक क्रेन का जो हिस्सा है वो उस कंटेनर के ऊपर गिर जाता है। और जहां पर जो जानकारी मिली है दोपहर के समय कई जो मजदूर हैं वो उसके अंदर वहाँ पर बैठे हुए थे, संभवतः ये जानकारी मिली है कि लंच कर रहे थे और उस दौरान ये जो हिस्सा है वो गिर जाता है, और जिसके बाद तब से लगातार जो मदद है वो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है और इसके साथ साथ एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, और अब से कुछ देर बाद जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है, और अभी भी लगातार जो तलाश है वो की जा रही है कि कहीं कोई व्यक्ति कोई जो मजदूर है यहाँ पर काम करने के दौरान फंसा हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर जो मलबा है उसे हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम डीसीपी जो यहाँ पर मौजूद है इनसे बात करेंगे। सर अभी जो मलबा हटाया जा रहा है क्रेन की मदद ली जा रही है क्या अब तक जो जानकारी है ताज़ा अपडेट क्या है?
1: ताज़ा अपडेट यही है जी कि दोपहर के 3 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। 4 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारी पुलिस की टीम और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुँच गई थी। तब से हम लगातार लगे हुए हैं। एक पर्सन जो इंजर्ड था अलाइव था उसको सबसे पहले रेस्क्यू किया गया, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। 3 लोगों की बॉडी निकली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत काफ़ी भारी मशीन थी जो कंटेनर पे गिरी, तो उसका जो रूफ़ है और बॉटम है वो पूरा क्रश हो गया है, तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि अंदर और क्या प्रेजेंट है।
0: किस वजह से सर ये जो पूरा हादसा है वो हुआ, और जो मजदूर यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर बैठे थे क्या लंच कर रहे थे या फिर मौसम ख़राब था बारिश की वजह से यहाँ पर छुप कर बैठे थे क्या?
1: एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम फर्स्ट जो किसी भी डिज़ास्टर या एक्सीडेंट का रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू होता है, तो हम रेस्क्यू मोड में ही हैं। फर्स्ट हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीज़न और वहाँ जाने का उनका रीज़न क्या था वो हम बता पाएंगे।
0: हरियाणा पुलिस की टीम तो मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और तमाम कौन सी टीमों की और मदद ली जा रही है इसके ऑपरेशन के लिए?
1: सिविल डिपार्टमेंट भी सारे मौजूद हैं, पुलिस की टीम जैसा आप देख पा रहे हैं मौजूद है ही, एसडीआरएफ काम कर रही है, एनडीआरएफ भी प्रेजेंट है, तो जो भी रिक्वायर्ड फोर्स थी एम्बुलेंसेज अभी सारी खड़ी हुई थी, फायर की डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ थी, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी रेस्क्यू में चाहिए होता है सारा प्रेजेंट है।
0: ठीक है, तो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और संभवतः रात तक जो रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया जाएगा। जी
2: जी, थैंक्स वेरी मच दिव्यांकर, ये क्रूशियल अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड जस्ट टू रैप अप एंड टेल आवर व्यूअर्स, द लेबरर्स वर हैविंग लंच व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस। रेस्क्यू ऑप्स इज अंडरवे राइट नाउ, द पुलिस हैव आल्सो लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। ऑन दैट नोट, स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कम राइट बैक, न्यूज नाइट कमिंग अप नेक्स्ट विद मी।
3: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
4: Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time.
5: शुरू में देखने को मिल गया था कि criminal mindset है। बेड़ी हमें बकरी की खाल में शिकार किया है सर, they are chameleon people.
6: A brother, Major Harshit, speaks out for the first time on national television.
7: We have been fighting non-stop. We are not stopping until the justice is served.
8: Miss Singh, where is your son? Let me ask you that pointed question.
9: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
10: Breaking news coming in. Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your
11: screen. Number
10: first on NDTV.
12: Surrender kar rahe ho ya surrender nahi karne wale?
10: NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
6: Joining us live now for the first time is Rigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
11: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
6: These are difficult circumstances, but the hard questions still need to be asked.

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड to bring back the confidence of industry.
6: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring

0: जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आया धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
1: अगर राहुल जी ने जो कहा है, क्या वो दिख नहीं रहा, आर्थिक रूप से देश को जिस डॉलर 100 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल 100 क्रॉस कर चुका है, 40 साल की महंगाई सबसे बड़ी, पूरी तरीके से पूंजी निवेश रुक गया है, चारों तरफ बर्बादी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
2: द इकोनॉमिक क्राइसिस इज रियल, दे हैव सोल्ड $12 billion टू सेव द रूपी, दे आर सेलिंग द गोल्ड ऑफ द कंट्री, इट इज क्वाइट नाइस वेल बिफोर द पीपल रियलाइज दिस एंड दे विल कम आउट टू द स्ट्रीट्स।
3: भारत एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक है, आज भी इमरजेंसी का ऐलान हो या ना हो, इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात हैं देश के अंदर। बगैर ऐलान किए इमरजेंसी लगी है, क्या आप देख नहीं रहे कि सारी एजेंसीज पे सरकार का कंट्रोल है?
4: राहुल गांधी जी चुनाव हारते रहते हैं, इसका मतलब लोकतंत्र बर्बाद हो गया, ऐसा तो नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलते हैं, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, 3 बार पूरी तरह हार गए हैं और असेंबली में हारते जा रहे हैं, तो उसका गलती खुद होगा, कांग्रेस का अपना, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी की गलती होगा। हमारा गलती क्या है, हम तो लोगों का सेवा करते हैं और मोदी जी के नाम से लोग वोट देते हैं, समर्थन देते हैं, और हम देश का सेवा करते हैं, तो इसमें देश कैसे बर्बाद हो गया? कांग्रेस जीतने से डेमोक्रेसी जिंदा रहेगा क्या?
5: राहुल गांधी अपना भविष्य तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे का भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपना भविष्यवाणी राहुल गांधी कांग्रेस के खात्मा का, जैसे ये मुगलिया संतलंत के अंतिम बादशाह कौन थे, बहादुर जफर शाह, कांग्रेस मुगलिया संतलंत यानी माओवादी मुस्लिम कांग्रेस अंतिम संतलक राहुल गांधी होंगे खात्मा के।
6: राहुल इज एन एनार्किस्ट मैन, और जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी इस देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। याद करिए, पूर्व के अंदर राहुल गांधी ने कहा था ही वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। आज राहुल गांधी ये कामना कर रहे हैं कि भारत के अंदर अराजकता है। मैंने राजनीति में ऐसा कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना अपने देश से नफरत करता है जितना राहुल गांधी करते हैं।
7: Okay, so let's take that question across to Sanju Verma, spokesperson, national spokesperson of the BJP, political analyst Satushar Gupta, Shubhankar Bhattacharya, We also have with us Priyanka Bharti, national spokesperson of the RJD. But that first question I want to put to you, Ashutosh, senior journalist and political analyst, because you have been watching what happens in the country. When you listen to Rahul Gandhi, do you genuinely think that the country is headed for a revolt from within the system?
8: See, Padmija, that's a battle between the Congress and the BJP, and both should answer the questions, are the accusations made against each other? But one thing I'm very sure, and I partly agree with what Rahul Gandhi has said about the economics. And forget about Rahul Gandhi. Forget what Rahul Gandhi is saying. Don't take him seriously. But at least the government should take seriously the two individuals who had worked with the government. One is Dr. Surjit Balla. And Dr. Surjit Balla has written an article and has said that BJP is winning election one after another. But what about economy? He has said in 2013, India's economy was among the fragile five. And he said today that fragile five have become fragile two. That means India and Turkey. Then there is another gentleman who has worked as a finance secretary with the Narendra Modi government. His name is Subhash Chandra Garg. He wrote an article in Deccan Herald. And he said from fragile five to vulnerable one. Just imagine. So, you don't take Ashutosh seriously, you don't take Rahul Gandhi seriously, you don't take Priyanka seriously, because we are supposed to be the critic of the government. But the fact of the matter is, these people, Dr. Surjit Balla has worked as a member of Economic Advisory Council. He was an executive director of IMF. And Dr. Subhash Chandra Garg has worked as a finance secretary. Closely worked. He wrote a book on Mr. Narendra Modi and he praised Narendra Modi. Now, if these people are saying that Indian economy is not in good shape, or rather in mess, and if Dr. Surjit Balla says that from fragile five, we are into the fragile two, along with Turkey, and Subhash Chandra Garg saying, forget about Turkey, we are no comparison with Turkey, India today is a vulnerable one. I think the government should take it seriously, and the country should also take their words seriously, that there is something wrong with the economy, and people are upset.
7: Sanju Verma, it's not just about the economy. There are a variety of factors. Look, when Rahul Gandhi speaks, he is saying there is pent-up anger, and now such is the anger bursting forth that people within the system are scared. Like they say, when the people start marching, the institutions cannot withstand that pressure. So it's not just the economy. It is the neat paper leak. You've got more and more people speaking up against it. The economic hardship because of the war. And eventually, even though you may mock Rahul Gandhi, you would be ill-advised to ignore the warning signs.
9: You know, Padmaja, let me make a couple of points here. Very quickly, on the political bit I'll come, but since Ashutosh started off, by talking about the economy, it's only fair that I make some points for your audience's benefit. What Surjit Balla says, with no offense to him, what former finance secretary Subhash Garg says, with no offense to him, I will go by the facts on the ground, and I can say there is only one economy where the IMF has upgraded its GDP growth forecast, the World Bank has upgraded its GDP growth forecast, Morgan Stanley has upgraded GDP growth forecast, JP Morgan has upgraded GDP growth forecast, and Standard & Poor's, the global rating giant, last year upgraded our sovereign rating. It was done for the first time in 18 years from BBB minus to BBB plus. IMF says India is the only major economy growing at 7% plus with inflation at barely 3.5%. World Bank says Indian economy is the only one growing at 6.7% plus with inflation in the region of 3.2%. Standard & Poor's says under Modi, India is the only major economy which will continue to grow at 7% plus with inflation at 3.5% or thereabouts. So that's what international heavyweights have told. And I think that settles the debate about where we are. But I'm saying one thing. There are just four or five parameters any textbook economist looks at. I'll take 20 seconds. What is India's fiscal deficit? 4.4%. What was it under Congress? 6.9%. What is India's current account deficit? 0.7%. What was it under the Congress? 5.2%. Okay. What is India's latest retail inflation number? 3.48%. What was it under Congress? 12.7%. What is India's food inflation? 4.2%. What was it under Congress? 14.7%. And despite the depletion in forex reserves, 10 seconds, Let's not forget, even at 685 or 690, $690 billion.
7: Okay, 30 seconds have happened.
9: Cover 12 months of imports.
7: All right. So you're saying that there is no mutiny, there is no anger, there is no threat that this government has.
9: No, I did not come to the political.

0: रहे हैं कि सोरोस के एजेंट्स बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले आपके
1: ओके,
0: फॉरेन
1: थर्टी
0: मिनिस्टर
1: सेकेंड्स,
0: नारायण
1: थर्टी
0: सिंह
1: सेकेंड्स
0: कुछ
1: तुषार
0: कह
1: दन, आई
0: रहे
1: एम कमिंग
0: हैं
1: टू यू
0: कि
1: संजू
0: इकोनॉमिक
1: एंड
0: क्राइसिस
1: शुभांकर
0: है,
1: बोथ,
0: और फिर कह रहे हैं
1: थर्टी सेकेंड्स
0: कि
1: ओनली
0: जो
1: तुषार,
0: है
1: यस
0: वो
1: यस।
2: आरजेडी की नहीं हो रही थी अक्टूबर में, कौन सा
1: द
2: आरजेडी?
1: लीडर ऑफ ऑपोजिशन जॉब इज टू वार्न द गवर्नमेंट, ही इज वार्निंग देम ऑफ अ क्राइसिस।
2: अगेन नो नो नो, राहुल गांधी इज डूइंग इट टू स्टे रेलेवेंट, एंड प्रियंका'स क्वेश्चन दैट व्हाई वी डिस्कसिंग दिस, वी आर आल्सो डिस्कसिंग आरजेडी इन अक्टूबर, डजंट मीन दैट दे वन द इलेक्शंस। अबाउट कॉटन, शी इज लाइंग ऑन नेशनल टेलीविजन, द गवर्नमेंट हैज कट डाउन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन टू हेल्प द एमएसएमईज लाइक इट डिड लास्ट ईयर। अबाउट द वेनेजुएला क्रूड, वी वर इंपोर्टिंग वेनेजुएला क्रूड इवन यू नो बिफोर दिस, एंड सर्टेन रिफाइनरीज इन इंडिया आर एक्चुअली सूटेड टू प्रोसेस द वेनेजुएला क्रूड, सो आई डोंट नो व्हाई प्रियंका भारती इज लाइंग ऑन नेशनल टेलीविजन।
0: The producers here, what will happen to the cotton farmers? Yeah, कोई परवाह नहीं है उनकी ना। विदर्भ में आपको पता है कितने किसान हर साल आत्महत्या करते
2: Do you
0: हैं?
2: know there is a specific variety of cotton needed by the MSMEs? OAC himself was demanding a cut in the import duty, Priyanka. Your leaders were himself backing OAC.
1: Priyanka ji, let me just quote to you a few examples from the past, then I really must bring in Shubhankar Bhattacharya. This is not the first time that this has happened. Look, again, I reiterate. If there are issues, they should be individually debated and addressed. But to again and again talk about an uprising, a revolt, a mutiny, a systemic breakdown, that is something else altogether. What did Mr. Gandhi say in 2020? He said, people will drag Narendra Modi and beat him with sticks. He said this on the 7th of February 2020. Subsequently, what happened? The BJP and JDU came back to power in your state, in Bihar. Nobody was dragging and beating Narendra Modi. They were getting him back to power. You had the BJP-led NDA securing 75 seats in the 126-member assembly. What happened actually to the Congress is that they won only 29 seats. In February 2020, Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party swept Delhi. They got 62 out of 70 seats. Mamata Banerjee's All India Trinamool Congress, they got a landslide victory. Democracy was alive and kicking because across different states, you had the opposition also doing well. You had the BJP also doing well. The person who didn't do well was only the Congress party. Subsequently, you had in 2022, in London, Rahul Gandhi said, India is not in a good place. BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we are going to see the country go up in flames. Following that, Arvind Kejriwal's party won in Punjab. In Uttar Pradesh, Yogi Adityanath led the BJP to power. In Goa, the BJP won. In Gujarat, the BJP won. And it's only in Himachal Pradesh that the Congress won. My point is, these predictions about Pure Desh mein aag lag jayegi happened again and again. And they have never come true. Priyanka Bharti, they've never come true.
0: बिहार में आपको मालूम है, एक मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लोगों की जलकर मौत हो गई है, दिल्ली में कल का वो इंसिडेंट है, तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, हम चुप रहे हैं इसके ऊपर क्योंकि मोदी जी की सरकार आ गई है, डेमोक्रेसी बहुत सुरक्षित हो गई है। आप ये कहना चाहिए जब दूसरे देशों के लिए मार्केट खुल जाता है तो बहुत मतलब हमारे
1: इसीलिए तो हम डिबेट करते हैं टीवी पे कि आप ये सारे मुद्दे उठाएं, लेकिन ये कहना देश में आग लग जाएगी, इज इट द सेम एज सेइंग कि बिहार में प्रॉब्लम है?
0: सेइंग कि आग लग जाएगी, ये कब कह दिया कि आग लग जाएगी? उन्होंने कहा इकोनॉमिक सुनामी हिट कर रही है, वो तो हिट कर गई, सारे विदेशी निवेशक भारत के बाजार से पैसा निकाल के जा रहे हैं।
1: ही इज सेइंग देयर इज अ सिस्टमिक म्यूटिनी हैपनिंग इन द कंट्री दैट इवन द इंस्टीट्यूशंस आर स्केयर्ड ऑफ पीपल्स एंगर।
0: इकोनॉमिक एडवाइजर जो मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं वो उससे डरे हुए हैं, उनसे वो
1: okay.
0: क्या कह रहे हैं?
1: संजू वर्मा
2: एडवाइजर नाम लीजिए, कौन से इकोनॉमिक एडवाइजर डरे हुए हैं? प्रियंका भारती कौन से इकोनॉमिक एडवाइजर डरे हुए हैं? नाम लीजिए।
1: ओके संजू वर्मा ओके, अ नंबर ऑफ सिम्टम्स, होल्ड ऑन अ सेकंड, द चॉइस ऑफ वर्ड्स, प्लीज कैन आई हैव साइलेंस फॉर 30 सेकंड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स मे नॉट बी वेरी जुडिशियस बट द फैक्ट इज राहुल गांधी कैन सी द साइंस, दे आर कमिंग फ्रॉम बिहार where people have died in a hospital fire, where in Delhi, a hotel fire has claimed 21 lives, where there are children scared. One girl has committed suicide in Nagpur because she said, I simply cannot give the NEET retest anymore. He may have exaggerated a little bit, but he is saying that the pressure is building up. The country is like a pressure cooker. Sanju Verma.
3: You know, let me make one thing very clear. हमें बचपन में एक poem सिखाई गई थी. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Indian politics ke Humpty Dumpty kaun hai? Rahul Gandhi. Indian politics ke Humpty Dumpty kaun hai? People like Tejaswi Yadav. Ye chunav jeetna bhool chuke hain aur inke pravakta national TV par aakar मोदी जी को राजनीति

0: 20 सांसद जो हैं धन्यवाद 20 सांसद आपने कहा है तृणमूल के टूटने वाले हैं, कौन है ये 20 सांसद?
1: मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मेरा को पास पता है जो 58 एमएलए जो टीएमसी ममता बनर्जी को नेतृत्व छोड़ के अभिषेक बनर्जी को खिलाफ आवाज़ उठाए मुद्दा उठा के वो जो असेंबली में ऑनरेबल स्पीकर को पास जाके जो 58 विधायक जो दबाव किया वो उनके मुताबिक वो ऑनरेबल स्पीकर साहब उनको एलओपी में चेयर दे दिया, वो अपोजिशन में बैठा दिया कल। तो मेरा ख्याल से जो लोग ये सब मुद्दा उठा रहे जो बात कर रहे तो वो अगले दिन लोकसभा में भी जो 29 एमपी है 29 टीएमसी का जो एमपी है उनको जो नेता चुना गया अभिषेक बनर्जी को उनको खिलाफ भी ये मुद्दा उठाएगी। मेरा आज जो पता है खबर है जो 20 एमपी में उनको खिलाफ उनको नेता से लोकसभा से नेता टीएमसी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेता से हटाने के लिए एक कदम उठाएगी।
0: यानी कि आप कह रहे हैं कि 20 जो सांसद हैं वो सिर्फ लोकसभा में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कंप्लेन करने वाले हैं और अलग हो जाएंगे, 29 में से 20 अलग हो जाएंगे लोकसभा में?
1: जी हाँ।
0: क्या इसको लेकर के कोई मीटिंग भी हुई है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ सांसद जो है दिल्ली आए थे कुछ मीटिंग करने के लिए, आपने कुछ ऐसा सुना है कि टीएमसी के सांसद दिल्ली में कोई मीटिंग किए हैं?
1: हाँ वो सारे चल रहा है, ये चर्चा चल रहा है। वो जो बरासात का जो एमपी है काकुली घोष दस्तीदार उनको लेके सारे कोई एमपी है जो चर्चा में है वो बात कर रहा है अपना अपना, वो अगले दिन वेट कर लीजिए कुछ समय वेट कर लीजिए, वो वक्त आएगी उसी टाइम वो लोकसभा को जो ऑनरेबल स्पीकर है उनको पास वो दबाव करेगी जो इनको हटाना चाहिए लोकसभा से नेता से, यही मेरा जानकारी है।
0: इंटरेस्टिंग दैट वेरी स्पेसिफिकली यू आर सेइंग दैट काकोली घोष दस्तीदार इज गोइंग टू बी लीडिंग अ डेलीगेशन ऑफ एमपीज एंड 20 आउट ऑफ 29 दैट द टीएमसी हैज इन द लोकसभा आर गोइंग टू सबमिट अ लेटर आस्किंग फॉर रिमूवल ऑफ अभिषेक बनर्जी एज लीडर ऑफ द पार्टी। आप तो इतने वक्त तक तृणमूल के अंदर रहे हैं, इनफैक्ट 5-6 महीने पहले तक तो आप तृणमूल के अंदर ही थे, इस तरीके की नाराजगी आपने भापी थी कि नाराजगी है? और किसके खिलाफ है यह नाराजगी? दीदी के खिलाफ है, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है या किसी और के खिलाफ नाराजगी है? क्यों?
1: देखिए ये दीदी का पार्टी का चेयरपर्सन है टीएमसी का, मैं 2023 साल के जो पंचायत चुनाव हुआ उसी टाइम से ये अभिषेक ने पार्टी को जनरल सेक्रेटरी होने के तरफ वो जो पंचायत चुनाव में जो 3-स्टार पंचायत का मेंबर है पीएस का मेंबर है जेडपी का मेंबर है इनको पैसा लेके आईपैक को अंदर अंदर घुसा के पैसा लेके टिकट दिलाया, तो उसी टाइम मैं खुद ममता बनर्जी को ये नज़र में लेके आया, इनको खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत सारे बार मुद्दा उठाया बोला, लेकिन वो मेरा बात का कोई ध्यान नहीं दिया कोई गुरुत्व तो नहीं दिया। वो अभिषेक जो किया पार्टी के लिए वही वो सील मोहर दे दिया वही वो अप्रूव कर दिया। तो मेरा आज का दिन बहुत सारे आदमी ममता बनर्जी को खिलाफ बोल रहा है अभिषेक को हटाने के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन उसी टाइम तो कोई मेरा बात भी नहीं सुना मेरा बात को सपोर्ट भी कोई आदमी नहीं दिया, मेरे को पार्टी से सोकोच किया दो बार, एक बार वार्निंग नोटिस भी दिया बाद में तो 4 दिसंबर 2025 मेरे को तो निकाल दिया पार्टी से। तो मेरा यही रिजीम यही मुद्दा उठाने का टाइम मेरा तो कोई गुरुत्व तो नहीं दिया।
0: तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो बगावत हो रही है ये अभिषेक बनर्जी और आईपैक की वजह से है और करप्शन की वजह से? कट मनी पैसा,
1: हाँ वही तो पार्टी को ऐसा कट मनी खा के पैसा लेके जो जहाँ जहाँ किया, तो ममता बनर्जी पार्टी का सर्वोच्च नेत्री होने का वो क्यों करने दिया? वो तो राज उनका हाथ में था, लेना चाहिए, उनका पास में ही एक उनका विधायक चुनाव गया, उनका टिकट दिया 2021 में, तो मैं उनको पास जाके कोई जजमेंट नहीं पाएगी तो कैसा चलेगी?
0: तो यानी कि दीदी को पता था कि क्या चल रहा है ये कट मनी का मामला, पर उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया?
1: सब कुछ पता था ना, सब कुछ पता था, इतना हिम्मत किसी को नहीं होते, जो दीदी को पता नहीं होते तो दीदी ऐसा काम, दीदी को नॉलेज ना देके, दीदी तो खुद जो रैली में बात करे वो बोले मेरा सब पता है, सब कुछ जानकारी है, दीदी खुद दबाव डालते, लेकिन किसी को बात नहीं सुनना चाहते, वो इनका भतीजा को जो जो कर रहा वही वो अप्रूव कर दिया।
0: क्योंकि हुमायूं कबीर जी जो कल लोग अलग हुए हैं, 58 जो 58 एमएलए थे उनमें से 17 एमएलए जो हैं वो मुस्लिम हैं, और कुल 34 एमएलएज जो मुस्लिम्स हैं, और ये तो सबसे लॉयल जो ग्रुप था जो हमेशा टीएमसी को वोट करता था, आपको चुन के भेजता था, और मैं ये देख रही थी कि टीएमसी के इस बार 8 एमएलए चुन के आए मुर्शिदाबाद से, 8 के 8 अलग हो गए, ये कैसे हो गया? जो लोग हमेशा दीदी के पीछे खड़े रहते थे, 8 के 8
1: मुर्शिदाबाद में 9 चुना मुर्शिदाबाद में 22 सीट से टीएमसी को 9 चुना गया, एक बाबर अली वो जलंगी का 76 जलंगी का विधायक है, वो ज़्यादा कम उम्र है और पहले वो पार्टी भी नहीं किया, उनको टिकट दिया गया, वो चुनाव गया, वो नहीं आया, बाकी 9 से 8 वो ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को खिलाफ जाके, और ऋतुव्रत जी संदीप साह को सपोर्ट देके सिग्नेचर भी किया कल,
0: क्यों
1: असेंबली में स्पीकर,
0: ये तो सबसे सबसे मजबूत इलाका था ना ममता बनर्जी का, मुर्शिदाबाद मालदा, मुसलमान वोट हमेशा कहते थे टीएमसी को मिलता ही मिलता है, ये क्यों अलग हो गए?
1: अभी भी मिला, चुनाव में तो वोट ज्यादा से ज्यादा मिला, मुसलमान लोग ममता बनर्जी को पार्टी को ही वोट दिया, वो हार गया लेकिन 2,60,00,000 से ज़्यादा वोट मिला टीएमसी का, और जो बीजेपी के जीता उनको 2,93,00,000 से ज़्यादा वोट मिला, तो 33,00,000 से वो सत्ता में आ गया, ये अपोजिशन में गया, लेकिन ममता बनर्जी पहले से कोई अच्छा ढंग से अच्छा तरीका से उनको लीडरशिप देते, कोई अभिषेक के ऊपर कोई नहीं छोड़ते, तो आज के यही हालत में नहीं पूछते,
0: ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ,
1: नहीं लेते
0: कि जो लोगों को सबसे ज्यादा इस बात का अमेजमेंट हो रहा है कि मुसलमान एमएलए तो कम से कम टीएमसी के साथ रहते, वो क्यों नाराज है दीदी से, वो क्यों अलग हो गए?
1: देखिए ये जो मुसलमान जितना सारे 34 जीता टीएमसी का मुसलमान एमएलए, उनके 17 से 18 चला गया इनको खिलाफ, वो चले जाने का यही तरीका है, उनका अपना अपना कोई ना कोई गलत काम से जुड़ा हुआ है, उनको खिलाफ कोई सत्ताधारी पार्टी कोई एक्शन लेगी, कोई पुलिस को देके, कोई ईडी के लगा के, एनआई के लगा के, कोई सीबीआई के लगा के, कोई उनको खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, ये डर से ये यहाँ कर रहा है, ममता बनर्जी को साथ छोड़ा, मेरा ख्याल से यही होना चाहिए, यही हो।
0: हुमायूं कबीर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए,
1: छोड़ दीजिए दीदी,
0: ठीक है, जाते जाते ये बताइए आपकी बाबरी मस्जिद अभी भी उस पर काम जारी है या बंद हो गया है?
1: नहीं नहीं काम जारी है, काम जारी है।
0: All right, that was Humayun Kabir, somebody who's been an insider in the Trinamool Congress, now an MLA of his own party, has won handsomely in 2 seats in the Murshidabad area, but is making a prediction that The beginning has been made in the assembly, but next is going to be the Lok Sabha, 20 MPs willing to break away, followed by the Rajya Sabha.

0: हमने पत्थर मारे तो शीशे नहीं टूटे, वो इतने
1: किस टाइप के शीशे थे? क्योंकि हर ऐसे तरह के बहुत बिल्डिंग्स है इधर, और हर बिल्डिंग का सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट गेट है।
0: इसमें भी वही है, सेम है, एक ही है, कोई मतलब पीछे का रास्ता नहीं है कि अगर बंदा कुछ इमरजेंसी में फंस जाए पीछे से निकल जाए। इसमें सिर्फ मैन है और वो भी लॉक था।
2: All right, I'm going across to my colleague Tejshree, who's also been tracking this story very closely. Tejshree, Lufkesh Bajaj sent to 4 days remand, but during the interrogation, he clearly put all the onus on the hotel manager, Jay Mishra, who is on the run as we speak. Tell us more about that and what perhaps can we expect. We're also awaiting that very crucial, high-level meet of the Delhi CM tomorrow at 5 p.m.
3: Right. Well, Raisha, you see, back-to-back meetings are taking place. In fact, yesterday we saw that the Delhi LG also chaired a meeting. Mr. Taranjit Singh Sadhu, he in fact also mentioned about this incident and also in fact took cognizance of the other buildings as well that are running with utter negligence. Not just that, but today in fact also Rekha Shah Gupta visited the hospital where the victims were hospitalized, where the incident took place. Apart from that, also what we are getting to know is, yes, as you have rightly mentioned, this individual on whose name the registration is done, the license has been issued on his name as well, Jay Mishra, he is still absconding. There is no whereabouts as to where is he, but yes, the police has sent the court has remarked that the court has granted 4 days police custody to, in fact, this particular individual whose name is Lufkesh Bajaj, and he was also on a run for 14 hours. Then police nabbed him. But important to note over here is that the manner in which the license was issued to them only for 6 rooms, and it was NDTV who first exclusively accessed those documents of that particular license that highlighted the fact that how the license was issued. Particularly, it was mentioned for 3 rooms for the ground floor, 3 rooms for the rooms for the first floor, and nothing except that. The committee also in fact visited the building where at that particular point of time during the year 2024 the building had only 6 rooms, but then gradually without informing the authorities they
2: built absolutely the building, you and Tejshree, you've been on ground reporting this story, and we were the first channel to report on the lapses and the licensing, the expired license of Flourish in there in South Delhi's Malviya Nagar. Let's now tell you about more lapses which have emerged at this point of time. Various lapses right now. Lapse number one, hotel's roof exit was closed. So this was also one of the primary reasons as to why all the people inside that hotel could not escape when the fire broke out. Lapse number two, there were electronic stoves and appliances in many rooms as well. Lapse number three, permission only for 6 rooms. That's 3 rooms on the first floor, 3 rooms on the second floor. But Lufkesh Bajaj, along with his old partners, ended up making 25 rooms. And that's lapse number four, 25 rooms operating at hotel. Lapse number five, hotel had rooms in basement too, and that's the area the fire broke out from, the basement, after which you traveled all the way to the other floors. Lapse number six, hotel only had one entry and exit point, that too an electronic gate which was shut, and that's why a lot of people died because of suffocation because they could not breathe inside. Lapse number seven, hotel had no fire NOC certificate, which is extremely mandatory for all hotels here in Delhi. Lapse number eight, no windows, basement secured with shutter as well. So at this point of time, clearly it was like a human trap. After the fire broke out, the people living inside the hotel had no way to go. Meanwhile, even as investigators uncover fresh details in the deadly Malviya Nagar hotel fire, NDTV's ground investigation has exposed alarming fire safety lapses at nearby properties linked to the same owner. From basement rooms operating without safety equipment to locked roof exits and blocked escape routes, our reality check raises serious questions about compliance and accountability. My colleague Tejshree brings you this exclusive report.
4: NDTV has exclusively managed to reach to the basement of another property of a Flourish Stay, and we are actually in the basement of another property which is just 200 to 300 meters from the very place where the incident took place, or I should say a man-made disaster. And here, in fact, what we'll be showing you is actually quite surprising and shocking. There in the basement was only a restaurant that was running illegally, but here is a complete floor, viewers. This is a complete room, a two-bed bedroom, which in double bed bedroom, which is completely functional. You can see proper television, AC, fan, and a geyser. Everything is installed. Almiras are there, and not just one room. There are 1, 2, 3, 4, and in total 5 rooms being constructed, and all were operational, completely functional. Some medicines are also kept over here. It seems like they are for the, probably a patient could have been staying over here because the hospital is nearby. So the manner in which, you know, this entire hotel is functioning actually from the basement is raising serious questions on the administration. The incident has just taken place over there, and how in fact this hotel was running in basement since past so many years. Why were the authorities unaware about the fact? कल जब आप गए वहाँ पर तो अब किस तरह से जो गेस्ट थे वहाँ पर वो किस कंडीशन में थे? कोई
5: एहतियात मैम, अंदर का मंजर जो था वो बहुत खौफनाक था। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा बेसमेंट से ही हमने अंदर घुसे, हम फायर फाइटिंग एंड दिल्ली पुलिस के साथ। जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक 25 ईयर ओल्ड लड़की थी जो रिसेप्शन के पास पूरी जल चुकी थी, जिसके दोनों हाथ और पैर अकड़े हुए थे। जिसको सबसे पहले हमने बाहर निकाला वो ब्रॉड डेड थी। उसके बाद आगे गए एक पेशेंट
4: के पास, ऐसी
5: हाँ गड़ी हुई थी रिसेप्शन के पास, 25 ईयर ओल्ड होगी लगभग उसकी है, जो अकड़ी हुई थी प्रॉपर। और जब हम उससे आगे बढ़े तो एक व्हील चेयर पर शायद वो पेशेंट ही था, वो पूरा जल चुका था व्हील चेयर पर बैठा हुआ।
6: क्या है कि हम जब उस होटल में गए तो अब हमने देखा कि मेन स्टेट से वो सेंटर में बनाई हुई है, उसके अलावा कोई एग्जिट गेट नहीं है, एक ही गेट बना हुआ था। अब बाकी जो होटल्स यहाँ पे चल रहे हैं वो लीगल हैं, इलीगल हैं मैम, वो हमारा काम नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, वो प्रशासन की जॉब है। प्रशासन क्या करता है, किसकी मिली भगत से चल रहे हैं।
4: Imagine the condition if somebody has to come upstairs to rescue himself, or in fact he must have been thinking that I can go out from this door, I can go out to the terrace and breathe some air so that I can save my life. But what he gets over here, this door which is locked from outside. Why the door is locked from outside? You see, there are these big wires, these big meters, large meters on my right and left hand side, and in fact if the fire reaches over here it could result into a massive blast as well. The questions are seriously being raised about why the door is being locked, and no help could also in fact reach over here. You see these windows are also completely unbreakable. If somebody wants to just gasp there, that is also not possible because nobody can break this window as well. And apart from this, several lapses have been reported in this building as well, from basement to first floor to third floor to a fourth floor where we are reporting right now, and the similar kind of lapses in the Flourish Stay as well. Serious questions being raised that how is it possible that in the South Delhi, in the heart of Delhi, these all lapses are neglected by the authorities coming into action after the accident, or I should say a man-made disaster. With camera person Rakesh Mahale, this is Tejshri for NDTV from Delhi.
2: Meanwhile, a pall of grief hangs over Gurugram as the Agarwal family prepares to receive the bodies of the loved ones killed in the devastating hotel fire in Delhi's Malve Nagar. Among those who lost their lives was a chartered accountant. His name, Vivek Agarwal, who had traveled to Delhi with his mother, wife, daughters and other relatives. The family had been staying at a guest house near a hospital where Vivek's father, Radheshwam Agarwal, was undergoing a treatment. In a heartbreaking twist, the 80-year-old father is now the sole survivor of his immediate family after the blaze claimed the lives of all 8 members.
7: मतलब हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ का, छोटी बेटी का कहाँ है। मैक्स में तो 3-4 लोग बताया जो है बॉडी हमें दिखा दी है, बाकी कुछ नहीं पता कौन कहाँ है, कुछ नहीं बता रहा कोई। कोई रेस्क्यू टीम हेल्प करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। हम खुद परेशान है, खुद भाग दौड़ कर रहे हैं कि कहीं हमें कुछ मिल जाए।
8: कहना अल्टीमेटली तो यही है, यहाँ ये मोक्ष धाम है जहाँ सबकी क्रिया की जाती है। कहना तो यही है, परमात्मा ने क्या लिखा है, कब लिखा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बस हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, शायद बहुत दुखी हैं। भगवान से जवाब मांगेगी ऐसे इकट्ठा पूरे परिवार को ख़त्म हो जाना, पूजा पाठ ये वो सब करते हैं, पर भगवान ने पता नहीं क्या क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, जवाब कभी मिलेंगे नहीं। अब इसमें इस केस में तो ये हो सकता है सिर्फ कि जो भी दोषी हैं, दोषी कौन होंगे, वो जिन्होंने एक बिल्डिंग बनाई कमर्शियल यूज़ के लिए, कुछ ऐसा हो कि ऐसे दोषी और ना हों।
9: आशा है विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं, विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे, अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसिज थी वो, उसकी माता भी, दो बच्चे थे उनके, उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे, तो ये बताया जा रहा है भाई वहाँ ये वैसे ऐसे हादसा हो गया।
10: I'm currently present in Gurgaon sector 46 and a lot of activities taking shape here. I'm right outside the Agarwal residence where the bodies of the victims are being brought here. Five bodies are being brought here of the victims of the Agarwal family. Remember that Vivek Agarwal was a chartered accountant, a 46-year-old chartered accountant who went with his family to Malviya Nagar, which is essentially in South Delhi in the Hosrani area. What essentially happened there was that a fire broke out there, and after which he lost 8 of his family members. He was also somebody who lost his life in it. He was attending to his father who was admitted in a hospital nearby. So the father is now the only lone survivor in this. You can see the ambulances right behind me. These are the ambulances carrying the mortal remains. Now his wife Tarjani has passed away, his mother has passed away, his two daughters have also passed away in this incident. So of course a lot of questions being raised, especially with regards to safety protocol, with regards to fire norms in the case. We're also trying to understand what essentially went wrong. The government is also now issuing notices to similar such places which perhaps do not have an NOC like in this case.
2: All right, we have some breaking news coming in. There's been a crane which has collapsed during Jewar flyover construction. Several workers fear trapped as we speak. Rescue operation is underway in Haryana's Faridabad. It's a major accident which has occurred on the under construction Green Highway connecting Faridabad to Jewar International Airport. There are fears that several laborers may have been trapped after heavy construction machine toppled over during the ongoing construction work. This is the under construction bridge between Faridabad and Jewar. The accident took place near Panhera village. Police and rescue teams have reached the site immediately after receiving information about the incident. As we speak, a rescue operation is underway to pull out workers who may be trapped under the debris. There's also been no official confirmation yet regarding the number of injured or diseased people. The police have also launched an investigation into the incident.
11: तीन डेड बॉडी निकली है, एक बंदा जीवित निकला है, फिलहाल चार है, बाकी अभी ऑपरेशन चल रहा है। हमारे तो जैसे ऑपरेशन चलाया, जैसे भी विक्टिम जो भी मिले उनको हमने स्ट्रेचर पर लेके डेड बॉडी को एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया।
2: Right, my colleague Devyankar is now joining me live on the show. Devyankar, there's been you joining me live from the incident site. Can you tell us what is happening at this point of time?
12: जी बिल्कुल, देखिए दोपहर में तकरीबन 3 बजे के आसपास जो घटना है वो होती है पनहेड़ा खुर्द का, ये वही इलाका है मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे। फिलहाल जो मलबा है उसे हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, यहाँ पर तमाम जो जेसीबी हैं वो लगी हुई हैं, और सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे जो कंटेनर है उसके ऊपर जो ये जेसीबी की जो ये क्रेन का हिस्सा जो गिरा वो किस तरह से कंटेनर जो है वो दब गया, और इसी में दबने की वजह से जो मजदूर अब तक निकाले गए हैं उनकी संख्या 4 जो आधिकारिक तौर पर डीसीपी की तरफ से बताई गई है, और उनमें से 3 मजदूरों की जो मौत है वो हो गई। दोपहर में 3 बजे के आसपास जो ये घटना है वो हुई है। गैंट्रिक क्रेन ये सामने अगर हम आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाएं तो ये जो हिस्सा आप देख पाएंगे ये सामने सीधा इन तस्वीरों में नजर आएगा, ये जो गैंट्रिक क्रेन है नीचे यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसको मेरे कैमरा पर्सन मुकेश इस्टेब्लिश करेंगे ये तस्वीर। ये जो ट्रैक है इस पर ये जो गैंट्री क्रेन है इस पर रहती है, और यहीं पर जब दोपहर के समय जब मौसम ख़राब हुआ और उसके बाद ये जो हिस्सा अचानक से जो डिसबैलेंस है वो हो जाता है, और जिसके बाद इस गैंट्री क्रेन का जो हिस्सा है वो उस कंटेनर के ऊपर गिर जाता है। और जहाँ पर जो जानकारी मिली है दोपहर के समय कई जो मजदूर हैं वो उसके अंदर वहाँ पर बैठे हुए थे, संभवतः ये जानकारी मिली है कि लंच कर रहे थे और उस दौरान ये जो हिस्सा है वो गिर जाता है, और जिसके बाद तब से लगातार जो मदद है वो यहाँ पर जो पुलिस की टीम है और इसके साथ साथ SDRF को भी बुलाया गया है, और अब से कुछ देर बाद जो NDRF की टीम है वो भी यहाँ पर पहुँच रही है, और अभी भी लगातार जो तलाश है वो की जा रही है कि कहीं कोई व्यक्ति, कोई जो मजदूर है यहाँ पर काम करने के दौरान फंसा हुआ तो नहीं है, तो यहाँ पर जो मलबा है उसे हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हम DCP जो यहाँ पर मौजूद है इनसे बात करेंगे। सर, अभी जो मलबा हटाया जा रहा है, क्रेन की मदद ली जा रही है, क्या अब तक जो जानकारी है, ताज़ा अपडेट क्या है?
0: ताज़ा अपडेट यही है जी कि दोपहर के 3 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। 4 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारी पुलिस की टीम और रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुँच गई थी। तब से हम लगातार लगे हुए हैं। एक पर्सन जो इंजर्ड था, अलाइव था, उसको सबसे पहले रेस्क्यू किया गया, उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। 3 लोगों की बॉडी निकली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत काफ़ी भारी मशीन थी जो कंटेनर पे गिरी, तो उसका जो रूफ़ है और बॉटम है वो पूरा क्रश हो गया है। तो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि अंदर और क्या प्रेजेंट है।
12: किस वजह से सर ये जो पूरा हादसा है वो हुआ, और जो मज़दूर यहाँ पर उस कंटेनर के अंदर बैठे थे, क्या लंच कर रहे थे या फिर मौसम ख़राब था, बारिश की वजह से यहाँ पर छुप कर बैठे थे, क्या?
0: एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो इन्वेस्टिगेशन, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम फर्स्ट जो किसी भी डिज़ास्टर या एक्सीडेंट का रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू होता है, तो हम रेस्क्यू मोड में ही हैं। फर्स्ट हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रीज़न और वहाँ जाने का उनका रीज़न क्या था वो हम बता पाएंगे।
12: हरियाणा पुलिस की टीम तो मौजूद है, SDRF, NDRF और तमाम कौन सी टीमों की और मदद ली जा रही है इसके ऑपरेशन के लिए?
0: सिविल्स डिपार्टमेंट भी सारे मौजूद हैं, पुलिस की टीम जैसा आप देख पा रहे हैं मौजूद है ही, SDRF काम कर रही है, NDRF भी प्रेजेंट है। तो जो भी रिक्वायर्ड फोर्स थी, एम्बुलेंसेज अभी सारी खड़ी हुई थी, फायर की डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ थी, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी रेस्क्यू में चाहिए होता है सारा प्रेजेंट है।
12: ठीक है, तो रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है, और संभवतः रात तक जो रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया जाएगा। जी
2: जी, थैंक्स वेरी मच दिव्यांकर, ये क्रूशियल अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड जस्ट टू रैप अप एंड टेल आवर व्यूअर्स, द लेबरर्स वर हैविंग लंच व्हेन दैट इंसिडेंट टुक प्लेस। रेस्क्यू ऑप्स इज अंडरवे राइट नाउ, द पुलिस हैव आल्सो लॉन्च्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। ऑन दैट नोट, स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, कम राइट बैक, न्यूज़ नाइट कमिंग अप नेक्स्ट विद मी।
13: तमिलनाडु इलेक्शन सो फार
14: फास्ट मूविंग बट स्टिल रिलैक्स्ड, इंफॉर्मेटिव बट स्टिल अनबायस्ड।
15: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
16: Happy meeting NDTV team here.
17: Thanks for NDTV.
18: Padmija Joshi,
19: Shreya Shide,
20: this is Shreya Ghosh,
21: Sandeep Chaudhary,
22: Manogya Loiwal,
23: Deepak Bopanna,
24: this is Vikte,
25: Tanushka Datta,
26: Sam Daniel,
27: Vika Ramaswamy,
28: Ritu Raj Purohit,
29: Shiv Arun.
30: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
31: The results with the BJP winning more than 200 seats clearly answer those questions. Our teams on the ground, in the studios, in the newsroom, we keep tracking every twist. We try to stay away from the noise, try to use the election analytics to bring the coverage together for you. 90% voting is not common. That's 140 elections with less than 70%. Tuvendu Adhikari leading at this moment. 5 states, 824 assembly seats. An election that felt more like a war.
32: Again going to shift focus to West Bengal, bring in our colleagues from the ground as well.
33: We've got some breaking news just coming in.
34: Kanchan Gupta to wear this morning. Green was not one of them. Kanchanda, what's going on here?
35: Khela ho be.
36: Vijay is finishing off every existing political force.
34: This holds, Pradeep. Gupta will be dancing. Joining us now, live and exclusive on NDTV, the architect of this historic victory.
37: Janta ko badhai de raha hoon.
30: To all our viewers who've joined us in this long day, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
1: the situation in the Strait of Hormuz right now and Iran. The last 48 hours have been tense. Is there a sense that strikes are imminent?
3: Iran can never have a nuclear weapon. And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
1: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
3: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
1: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
3: Well, it's not about India. It's about the whole world.